एक कहानी सुनोगे? वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम, सिंपली आफरीन स्वागत करती है आपका राइट हियर ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग्स पर. और एक प्यारी सी कहानी आपको सुबह सुबह सुनाना चाहूंगी मैं. वो कुछ इस तरह से कि एक रेलवे स्टेशन पर लोग इंतजार कर रहे थे. एक की ट्रेन 6:30 बजे आई सुबह के, दूसरे की ट्रेन 7:15 बजे आई, और फिर तीसरे की ट्रेन जो है वो 8:45 AM को आई सुबह. ठीक है, अब कुछ ट्रेन्स फास्ट थी, कुछ ट्रेन्स काफी सारे स्टॉप्स लेते हुए आई, कुछ ट्रेन्स का पूरा रूट ही लंबा था, और कुछ ट्रेन्स जो है वो बहुत दूर के शहरों से आई है. लेकिन यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा वो 8:45 वाली ट्रेन जो सबसे लास्ट में आई कि भाई तुम 6:30 बजे क्यों नहीं आ सकते थे, तुम क्यों इतना लेट आए. क्योंकि लोग जानते हैं कि हर एक ट्रेन का अपना एक रूट होता है, अपना एक डिस्टेंस होता है, वो अपने स्टॉप्स कवर करके आएगी और वो उतना ही टाइम लेकर आएगी. लेकिन एज ह्यूमंस हम इंसान ये क्यों भूल जाते हैं, सिंपल सी बात. हम किसी और की जब अचीवमेंट्स देखते हैं या फिर उनके माइलस्टोन्स देखते हैं, जैसे कोई घर ले रहा हो, कोई बिजनेस बना रहा हो, कोई कामयाब हो रहा हो, कोई शादी कर रहा हो, और सडनली हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हैं इन सब में. लेकिन नहीं, आप कहीं पीछे नहीं हो, आपका तो रूट ही अलग है ना. आपने थोड़ी ना कोई और स्टेशन से शुरुआत की थी ना, आपके वो सिग्नल्स थे, आपके ट्रैक्स अलग थे, आपके डिलेज अलग थे, आपका सपोर्ट अलग था, आपके वो तूफान अलग थे, तो आपका अराइवल टाइम उनके साथ ही कैसा हो सकता है. नहीं, शायद आप लेट नहीं, शायद आपका जो रूट है वो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि आपका जो डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल ही अलग है. तो बस कभी कभार इस कंपैरिजन के पूरे झमेले में या फिर इस ख्याल में आप आ जाओ तो यही याद रखना कि आप लेट नहीं हो, आपका रास्ता अलग है. और इसी खूबसूरत ख्याल के साथ दिन की शुरुआत करते हुए मैं सिंपली आफरीन माइक से दिल तक राइटर अनमिर्ची आपका स्वागत करती हूँ. बने रहेगा मेरे साथ अनमिर्ची इट्स हॉट.

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Energy, burga. Hello. Hello.
2: Hello, Mr. Anil.
1: अंजी.
2: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
1: तीनों आ गए?
2: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की. तो सर, तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
2: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
1: जी, फिर
2: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद. एक सेकंड रुकिए.
1: हेलो.
2: हाँ सर, एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
1: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है कोई, आप गलत मिला है.
2: तो गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
1: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
2: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके.
1: कौन बोल रहे हैं भाई?
2: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
1: क्या तरीका है,
2: क्या तरीका
1: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
2: लिया हुआ है. अनिल बंसल आप ही हैं?
1: अनिल बंसल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
2: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
1: आप पहले कंफर्म तो करो, कम से कम
2: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार. आप एक बच्चा, तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
1: बात करो, एक तरीका है बात करने का
2: यार, तरीका. आप बच्चे चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको. यार अनिल जी, कमाल कर दिया आपने.
1: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठा.
2: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने, साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता है,
1: आप कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, फिर मुझे नहीं चाहिए.
2: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
1: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा बच्चा, समझ गया ना?
3: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
1: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: दोस्तों, कतर की एक ऐसी जगह जो आपकी और मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन जैसे गर्मी आ जाती है ना कहीं हम इसे भूलने लग जाते हैं। लेकिन ये जगह एंश्योर करता है कि मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। और वो कैसे? वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। बात हो रही है मेरी फेवरेट वाली जगह यानी मीना डिस्ट्रिक्ट यानी ओल्ड दोहा पोर्ट के बारे में, जहां मैं अक्सर आपको मिलती हूँ। स्पेशली अगर ठंडी का मौसम है तो हाँ, मैं मेरी गाड़ी ले जाकर वहां पर पार्क कर देती हूँ और बस अपने गाने सुनते हुए मैं बस वो पूरे एरिया को ना बहुत इंजॉय करती हूँ। जस्ट लव द मिलू ऑफ दिस प्लेस। सो वेल, ये जगह गर्मी में ना ज्यादा लोग वहां पर आपको नजर नहीं आएंगे, तो इसीलिए गर्मी के वक्त पर अब व्हीकल्स जो है वो मीना डिस्ट्रिक्ट के रोड, यानी अगर आप देखोगे वो एक फिश मार्केट है और फिर स्टेयर्स है, दिस इज स्ट्रीट, एंटायर स्ट्रीट, कलरफुल स्ट्रीट है जहां पर आप चलते हो। वहां पर गाड़ियां जनरली नहीं अलाउड होती है, लेकिन अब से यानी 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर यहां पर गाड़ियां अलाउड रहेगी, यानी व्हीकल्स को एक्सेस भी रहेगा। साथ ही साथ पार्किंग जो है वहां के रिटेल और डाइनिंग आउटलेट्स के बिल्कुल करीब में आप लगा भी सकते हो, ताकि आपका जो वॉकिंग डिस्टेंस है इस गर्मी में वो बिल्कुल कम हो जाए। लेकिन आपको ये बता दूं कि इसका जो वक्त है, द रोड एक्सेस जो है, ये 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही होगा। एंड इनफैक्ट मजे की बात, मीना डिस्ट्रिक्ट में वैले पार्किंग भी जो है वो अभी आधी हो गई है रेगुलर रेट से, बस ये समर सीजन के टाइम पर, ताकि यार ये जगह को आप भूल ना जाए और ये जगह का मजा जो है, जो लुत्फ है, वो हमेशा आप लेते रहे। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Victory wishes Team Al Anawi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

मतलब थोड़ा 90s नॉस्टैल्जिया के साथ रेमो फर्नांडिस की आवाज में हो जाए. Well, that is only one right around Mirchi Mornings. Mike se dil tak aafreen ke saath, it's hot.

0: रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गाना तड़कता भड़कता राइटर और मिर्ची एंड मुझे स्ट्रॉन्गली लगता है कि 90s के जो गाने हैं स्पेशली फॉर मी, मतलब 90s इंडी पॉप बीइंग स्पेसिफिक डज सम मैजिक. मतलब अगर आपका मूड लो है, आपको कोई एनर्जी चाहिए या फिर आपको बस एक लॉन्ग ड्राइव पे सुकून की एक ड्राइव चाहिए, दिस इज योर प्ले लिस्ट आई फील. एंड फिलहाल के लिए तो यार योर प्ले लिस्ट शुड बी यर दैट इज 89.6 पर आफरीन के साथ आपकी सुबह वाली आदत. एंड सुबह वाली आदत लेकर आई है आपके लिए आज का तापमान का हालचाल.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
0: वेदर अपडेट. देखो वेदर ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है आज 42 डिग्री सेल्सियस है. क्या बात है, मतलब कल कुछ दिन तक 45 पर चल रहा था, आज 42 पर आ गया है, ऐसे कैसे. और 34 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम चल रहा है यहाँ पर. ऑल राइट, उसके अलावा अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो हाँ जी ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन साथ ही साथ हवाएं जो है आज काफ़ी तेज़ी से चल रही है. तो इतने दिन से जो वेदर का हालचाल हमारे कतर में चल रहा है ना, उससे थोड़ा परे आज कुछ अलग होगा. This is what weather is trying to tell us.
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders aur driver ki job. For bright future call now 3100813.
0: While playing this next track, जो है तो दो पॉपुलर सिंगर की आवाज में, यानी सोनू निगम और श्रेया घोषाल, लेकिन ये गाना जो है is not from a famous movie. अगर आप सच में बॉलीवुड के फैन है ना, ये गाना सुनो और बताओ कौन सी मूवी का है. Meanwhile, माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ. On Mirchi, it's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन बता बेटा सवाल क्या है।
0: हम लोग ऑफ रोडिंग पे हिमाचल आए हैं और कार का टायर फ्लैट हो गया है, क्या करें?
1: अबे लल्लू ये तो अच्छी बात है ना, टायर फ्लैट हो गया है, फ्लैट तो रेंट पे चढ़ा ना, टूरिस्ट प्लेस पे रेंट भी तो कितना अच्छा मिलेगा।
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: Well, that is RP Singh, Jonita Gandhi, Asis Kaur ki awaaz mein. Hamare OG Chunari ko thoda sa tod marod kar pesh kiya gaya hai. To bas, theek hai, wahi wala. Sun lijiye yahan par right around Mirchi. Main hoon Afreen aapke saath. Mirchi ghadi mein ishaara ho raha hai 7:03 ka.
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: देखो वैसे तो हम सात समंदर पार हैं लेकिन एक्चुअल एक्साइटमेंट और वो फीलिंग क्या है वी नो इट राइट बिकॉज भाई हमने ये इतने बड़े स्तर पर पूरी तरह से महसूस किया है वेल आई एम टॉकिंग अबाउट फुटबॉल वर्ल्ड कप भाई गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन का साथ है एंड यस फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में अगर बात करें तो आज की जो मैचेस है ठीक है ये जो मैचेस आज जो होने वाली थी वो है स्पेन वर्सेस कैबो वर्डे बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट सऊदी अरेबिया वर्सेस यूरोगे की मैच तो हो गई है और ये जो मैच थी ये दोनों एक एक गोल पर ख़त्म हुई है ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड और अगर ऑलरेडी जो अभी पिछले 24 घंटे में जो मैचेस हुई है उसकी अगर स्कोर्स मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो जर्मनी वर्सेस खुरकाओ की मैच हुई थी जहां का जर्मनी ने 7 गोल तो किए थे लेकिन खुरकाओ ने एक पहला गोल अब तक के उनका फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला गोल है नेदरलैंड्स वर्सेस जापान में भी 2 गोल ईच थे आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर के बीच भी जो मैच हुई वहां पर आइवरी कोस्ट ने एक गोल करके जीत हासिल की एंड स्वीडन वर्सेस ट्यूनीशिया में स्वीडन की जीत हासिल हुई है 5 गोल करके वर्सेस ट्यूनीशिया ने 1 गोल किया है सो ऑल इन ऑल मुझे इस वर्ल्ड कप में एक बहुत ही खूबसूरत बात ये लग रही है कि देखिए इतनी सारी छोटी छोटी अफ्रीकन कंट्रीज है अब वो कैबो वर्डे हो या फिर आइवरी कोस्ट हो या फिर कोट डिवोर हो कोरोका हो मीन्स दीस कंट्रीज probably a couple of them which I am getting aware of them कि अच्छा ये countries भी exist करती है भाई दुनिया में बहुत ढेर सारी countries है उनमें से ये छोटी छोटी countries जिसका population ही अपने आप में 500,000 है तकरीबन और उनमें से ये countries world cup के level तक पहुंच रही है that itself is commendable मतलब सोचिए कि कितना भरपूर टैलेंट होगा विथ लेस रिसोर्सेज विथ लेस सपोर्ट आई फील कि ये इस लेवल तक जा सकते हैं कि इन टीम मेंबर्स को अगर बहुत ज़्यादा सपोर्ट और वो सारा गाइडेंस मिल जाए तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं बट जहाँ पर भी फिलहाल पहुँची है बहुत ही सही बात है एक एक गोल भी ये कर रही है तो इट इज़ एब्सोल्युटली कमेंडेबल विद दिस आगे बढ़ते हुए करण ओजला की आवाज में That is my friends for you, my friend. माइक सिद्दल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vie de la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
2: स्पीकिंग।
3: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
2: अच्छा।
3: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
2: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था। तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
3: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
3: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
2: आ सकती हूँ मैं उसमें?
3: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियां आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
2: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
3: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या? हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
2: आपका क्या है?
3: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
2: ठीक है।
3: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
2: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
3: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुर के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही हैं।
2: नहीं, मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
3: हेलो,
2: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
3: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हो गया।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: अरिजीत सिंह की सुकून वाली आवाज में ये गाना आज से तेरी, और सुकून की जहां बात हो रही है तो मेरे ख्याल में तो सुकून का एक सिनोनिम अगर कोई है तो वो है कतर। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और जहाँ सुकून की बात होती है ना, देखो मैं अक्सर ये कहती हूँ बैक इन इंडिया टू माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कि आप स्पेशली बीइंग फ्रॉम मुंबई, या जो मुंबई वाले हैं आप ये बिल्कुल रिलेट कर पाओगे कि इतने साल वहाँ रहने के बाद ना ऐसा लगा था कि हाँ जिंदगी में सुकून होता है, ये होता है, बट नो माई फ्रेंड्स, हुएवर इज लिविंग आउटसाइड कतर उन्हें असली सुकून का मतलब क्या होता है ये पता ही नहीं होता है जिंदगी में क्या है। क्योंकि सुकून कतर में जब आप दोहा पोर्ट पर जाते हो, सुकून भरे वो समंदर की लहरें देखते हो, दैट इज़ द सुकून। सुकून वो है जब रात के 2 बजे भी आप कॉर्निश पर एकदम सेफली चल सकते हो। सुकून वो है जब पार्क में आपके बच्चे खेलते हैं ना तो आपको उनके इर्द गिर्द हमेशा उनके ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स जरूरत रहती है, लेकिन नहीं, आपको सुकून है कि हाँ बच्चे हमारे यहाँ पर सेफली खेल रहे हैं। सुकून वो है जब कोई चीज घूम जाती है ना कतर में तो बस बिना टेंशन के हम रहते हैं कि भाई वो फोन घूम गया है, यहाँ घूम गया है, वॉलेट घूम गया है, मिलेगा, भरोसा रहता है कि हाँ मिल जाएगा, ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा, है ना। दैट इज अ ब्यूटिफुल कतर फॉर अस। और यही सुकून की बात मैं नहीं कह रही हूँ भाई, 2026 ग्लोबल पीस इंडेक्स में पूरे मीना रीजन का सबसे पीसफुल कंट्री रैंक किया गया है हमारा कतर। इट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर अस, राइट। देखिए ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स सिर्फ क्राइम रेट्स नहीं देखता, ये सोशल स्टेबिलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट लेवल्स और ओवरऑल सोसाइटल हार्मनी को भी मेजर करता है। मतलब पीस सिर्फ पुलिस का काम नहीं होता है, पूरे एक इकोसिस्टम का रिफ्लेक्शन होता है। एंड बीइंग इन कतर सिंस पास्ट 12 इयर्स, हमने बहुत सारे चढ़ाव और उतार यहाँ पर देखे हैं, भले ही वो ब्लॉकेड क्यों ना हो, भले ही वो कोविड क्यों ना हो, भले ही वो रीसेंट ग्लोबल सिनेरियो जो था वो ही क्यों ना हो, कतर ने हर चीज़ को बड़े ही कामली, बड़े ही सुकून से रिएक्ट किया है। और बस हमें भी वो एक सिखा दिया है कि जिंदगी में कितने ही चाहे तूफान आए, पहले तो आपने शांत रहकर इसे डील करना है और बस उसी से सारे रास्ते निकल आते हैं। दैट इज कतर फॉर यू। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। इसको बड़े ही कामली, बड़े ही सुकून से रिएक्ट किया है और बस हमें भी वो एक सिखा दिया है कि जिंदगी में कितने ही चाहे तूफान आए, पहले तो आपने शांत रहकर इसे डील करना है और बस उसी से सारे रास्ते निकल आते हैं। दैट इज कतर फॉर यू। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट हियर।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल July 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई. एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी. विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट.
1: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी.
0: Catch Officer Brown.
2: Officer Brown.
0: Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.
3: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
4: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
5: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: करूं।
1: भाई साहब मैं क्या कहूँ इस गाने के बाद। RSTDM यानी रहना है तेरे दिल में का गाना, और ये गाना उस दिन से लेकर अब तक हमारे दिल में रह गया है, है ना? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और वक्त ये इशारा कर रहा है कि भाई आफरीन अब खेल खेला जाए। और वो कौन सा खेल भाई? आप जानते हो भाई, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट है। अब मैं सीन सुनाऊंगी आपको, और आज का सीन ना नॉट सो इजी पीजी माय फ्रेंड्स। लेकिन सीन में वो डायलॉग क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इससे शायद आपको समझ जाए कि ये मूवी कौन सी है। तो जो डायलॉग है और वो क्या है वो समझने की कोशिश करो। 90s की मूवी है, इतना तो हिंट दे ही देती हूँ मैं, ठीक है? 5000 1896 व्हाट्सएप नंबर है मेरा, पहले ही बता रही हूँ ताकि आप यू रेडी रहे और फटाफट से मैसेज भेजे। सो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाय और ध्यान से आज का सीन सुनो।
2: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
3: दुनिया का बोझ उठाना तो हमारा काम है, मगर समाज की गंदगी का बोझ उठाना तो आप लोगों का काम है। अब ये सब भी हम लोगों को करना पड़ेगा क्या?
1: ओके, यस। अगर आप भी शाने हो तो बताओ भाई कौन सी मूवी है ये। और जैसे मैंने अच्छा खासा हिंट आपको दिया कि ये 90s की मूवी है, बोझ उठाने की बात हो रही है। अरे वाह, मैसेजेस भी आने शुरू हो गए, और बिल्कुल सही मैसेज आए। क्या बात है भाई, यहाँ पर झटाझट मैसेजेस आए हैं। चार्ली का सही मैसेज आया है, अब्दुल रजाक का सही मैसेज आया है, मोहम्मद यूसुफ खान का सही मैसेज आया है। एंड आप भी अगर पता है आपको ये, तो 5000 1896 इज माई नंबर। फटाफट से यहाँ पर बताओ कि कौन सी मूवी की यहाँ पर बात हो रही है। काशिफ का भी मैसेज आ गया है, देखते ही देखते बहुत सारे मैसेजेस आए। और अगला गाना जो बचा रही हूँ मैं, वो फील गुड वाले कहने कहते हैं ना, बस उसी टाइप का है ये। कुणाल गंजा वाले की आवाज में माई सिदल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शाम और रश्मीत कौर आई पी सिंह की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.
0: और मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन जुड़ गई है आपके साथ, एक नया सवाल, एक नया दिन और बहुत सारे जवाब के साथ. हाँ जी, सवाल कुछ ऐसा था, 90s की मूवी का डायलॉग ऐसा सुनाया था मैंने और बड़ा ही इंटरेस्टिंग डायलॉग था. अच्छे खासे मैंने हिंट दिया था, प्रिपेयर किया था आपको, जैसे एग्जाम के लिए टीचर प्रिपेयर नहीं करती है कि हाँ देखो ये ध्यान रखो ये क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. बिल्कुल उसी तरह से मैंने बताया कि भाई क्वेश्चन का जो डायलॉग है ना, डायलॉग क्या कहना चाहता है उस पर ध्यान दो तो शायद आप समझ जाओ. सो वेल बहुत जल्दी जल्दी है मुझे डायलॉग बजाने की. सो हियर इट गोज.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
2: क्या इंस्पेक्टर साहब, दुनिया का बोझ उठाना तो हमारा काम है मगर समाज की गंदगी का बोझ उठाना तो आप लोगों का काम है. अब ये सब भी हम लोगों को करना पड़ेगा क्या?
3: ए शाने,
0: शाने, एक शाने ने तो बहुत गजब का जवाब दे दिया है यहाँ पर डायलॉग में. अब ये जो शाने जो जुड़े हैं हमारे साथ बॉलीवुड के, और वेल मुंबई में ऐसा शाने बोलना ऐसे ऐसे एक अलग अंदाज से कहा जाता है. तो मुंबई कर्स नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो वेल, कौन सा है ये मूवी, ये तो आपके ही जवाब बताएंगे यहाँ पर. हियर इट गोज.
4: हाय आफरीन.
0: हाय,
4: हाउ आर यू?
0: आई एम गुड. या
4: द मूवी नेम इज कुली नंबर 1.
0: हाँ जी,
4: गोविंदा कादर खान.
5: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. गुड मॉर्निंग,
5: कैसी हो आप?
0: बिल्कुल बढ़िया,
5: करता हूँ, खैरियत से होंगे
0: अल्हम्दुलिल्लाह.
5: ये कुली मूवी का डायलॉग है.
0: हाँ जी,
5: गोविंदा, आई थिंक गोविंदा का डायलॉग था.
0: बिल्कुल सही
5: बोले डायलॉग.
6: गुड मॉर्निंग आफरीन.
0: वेरी गुड मॉर्निंग.
6: मूवी इज कुली, सॉरी कुली नंबर 1.
0: हाँ वही है, वही है. That is the right answer. हाँ जी, good morning.
7: From another Mumbai car.
0: Okay.
7: The movie name is Kuli Number 1. Then iconic dialogue is from.
0: हाँ जी.
7: अपना गोविंदा, मुंबईचा मुलगा.
0: मुंबईचा मुलगा. खरं सांगितलं चेतन, तुम्ही हे मुंबईचा मुलगाच आहे, आपला गोविंदा आणि मी आहे तुमचे मुंबईचे मुंबईकर. का एक सांगतात आता मराठी का एकदम फ्लो निकल आ जाता है ना मेरा, ऐसे मिल जाते मुंबईकर तो इस तरह से हो जाता है. मुंबईकर नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो वेल, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया यहाँ पर, कुली नंबर 1 इज द राइट आंसर. एंड चेतन, अब्दुल रजाक, बसरुद्दीन साउद, सोहेल हुसैन, रिजाल हसन, सो मेनी मोर यार. मतलब आज उपेंद्र शर्मा, त्रिशा, फराज और सो मेनी मोर. बस किसी का नाम अगर छूट गया रहेगा तो सॉरी, अगली बार अपना नाम देखो टाइप करके भेजा करो ताकि मैं यहाँ झट से ले सकूँ. मीनवाइल जहाँ कुली नंबर 1 की बात हुई है ना, वन सॉन्ग विच इंस्टेंटली कम्स टू माई माइंड इज नॉट तुझको मिर्ची लगी तो, इट इज दिस सॉन्ग. क्योंकि मुझे ना करिश्मा कपूर का स्वैग एक अलग ही लगता था, गोविंदा के साथ में अगर कोई एकदम सही मैच बैठती थी ना, दैट वाज वन एंड ओनली करिश्मा कपूर. चंदना दीक्षित और अभिजीत की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची.

0: जी ये मिर्ची हेल्पलाइन है
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: ओ शाबजी, नूडल्स का एक पैकेट बनाऊं तो कम पड़ता है और दो बनाऊं तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करूं?
1: सिंपल है, तू कस्टमर को ऑर्डर पूछ के बनाना, वो बोले उतना ही बनाना।
2: रख रख
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: Well, looks like this June Bollywood movies की बारिश बरसा रहा है, because Cocktail 2, अभी जो आपने गाना सुना Cocktail 2 का था, शाहिद कपूर, कीर्ति सनोन, रश्मिका मंदाना की मूवी आ रही है this weekend only, और फिर मैं वापस आऊंगा। दिलजीत पाजी नसीर साहब की मूवी ऑलरेडी आ चुकी है, then we also have in the pipeline for the month of June Welcome to the Jungle। फिलहाल तो वेलकम टू माई शो, दैट इज मिर्ची मॉर्निंग्स, आपकी सुबह वाली आदत माइक से दिल तक आफरीन के साथ। और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:05 की तरफ, और चलिए थोड़े शरारती गाने की तरफ आगे बढ़े।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: वेल यू हैव गॉट इट राइट, मधुमन बातचीत जैस्मिन सनलस की आवाज में धुरंधर का ये गाना ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana, rabana. Burka, burka. La vieta la burka.
1: Mirchi, burka. Alo? Alo?
2: Ama bai. Bai, kun
1: bol
2: raha hai? Ama mujhe ab pata chala.
1: Alo, bai, kun bol raha hai? कौन बोल रहा है भाई?
2: अब मुझे आप बताया उसने कि तू भी यार तू एक नंबर का आइटम मेरी
1: भाई
2: भाई मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था. अबे तुझे मुझसे कह रहा
1: बता तो
2: अबे
1: भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा है क्या बात है.
2: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने.
1: अबे भाई कौन नताशा?
2: नताशा यार, नताशा को प्रपोज नहीं किया?
1: अबे भाई कौन नताशा? मैं तो नताशा को जानता भी नहीं.
2: तो तू पहले मुंह नहीं फाड़ सकता था?
1: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई, तू तो हंसता ही रहा.
2: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था? मैं तो हंस रहा था, तू तो चुप था. बता देता मुझे, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया. मैं हंसे जा रहा हूँ, हंसे जा रहा हूँ की तरह. नहीं, मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा है मेरी.
1: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा?
2: अबे तो
1: सुनने का मौका नहीं दिया, मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ.
2: तू शुरू में कह देता कि मैं नहीं बोल रहा, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, रॉन्ग नंबर लग गया, ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या? 5 साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी. तू पहले नहीं बता सकता मुझे कि मैं नहीं बोल रहा?
1: फोन तूने करा?
2: मैंने क्या फोन? मैंने क्या? तो तेरे हाथ में तो था, तेरे मुंह में जुबान नहीं थी. तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से.
1: मैं तो पूछा वो था, तू बोल कैसे रहा भाई?
2: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया, आपका लग गया. मैं आपका मुर्गा बना रहा था, थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी.
1: अरे तो भाई ये बात पहले बता देते यार, इतना तुमने हंसवा दिया, टेंशन अलग दे दिया.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

देखो नैना का कहना तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कहना क्या है ये फिलहाल आप सुनो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन कोरेक्टेड ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और महीने के बिल्कुल आधे पर हम पहुंच चुके हैं, 16th of June, आधा महीना गुजर चुका है। और ये जो रहता है ना आखिरी वाला 16 से लेकर मंथ एंड तक, थोड़े से डगमग डोला हम चलते रहते हैं हमारे फाइनेंसिस को लेकर, और दिल में जो अरमान होते हैं शॉपिंग को लेकर के, अब ये लेना है, थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, मंथ एंड तक वेट कर लेते हैं, ऐसे कुछ हाल रहता है। और वो लोग भी होते हैं भाई जो सिस्टमैटिकली प्लान करके पूरी तरह से खर्चे खत्म करके अब ये मोड पर रहते हैं कि भाई अब हम पैसे भेज सकते हैं। तो बस आपके लिए है आईपे के एक्सचेंज रेट। देखिए एक्सचेंज रेट तो ये कह रहा है एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 25.93, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.75। बांग्लादेशी की टाका के बारे में बात करें तो इट इज एट 33.76, वेयर एज एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको श्रीलंकन रुपीज 91.57, और एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं नेपाली रुपीज दैट इज 41.49। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। फोन की घंटी बज रही है मेरी, तो देखते हैं किसका फोन है। मैं चली फोन उठाने, यहाँ पे अगला गाना सुनो ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अर्जुन आएंगे?
1: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, Mirchi Mornings par Afreen ka saath hai right here. एंड वेलकम बैक. अब चलिए, गेम खेलने का टाइम हो चुका है. ये वो वक्त है जहाँ पर अक्सर जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं ना, वो एकदम तैयार रहते हैं. जैसे ऐसे फ़ोन को एकदम हथियार की तरह पकड़ के एकदम तैयार रहते कि भाई अब अटैक कर रहा है. आफरीन के सवाल का जवाब इस तरह से देना है. एंड जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो उन्हें बता दें कि भाई यहाँ पर अब आफरीन जो है एक कहानी सुनाने वाली है. मूवी की कहानी ही है, लेकिन आपने गेस करना है कि आखिर ये जो मूवी है ये है कौन सी. सो आज की कहानी कुछ इस तरह से. एक दुल्हन शादी करके ससुराल आती है, पर दुल्हा जो है वो कहीं बिजनेस ट्रिप पर निकल जाता है. ठीक है, उसके बाद एंट्री होती है एक भूत की, जो दुल्हन से प्यार कर बैठता है और दूल्हे का रूप लेकर घर में आ जाता है. अब असली हस्बैंड दूर है, डुप्लीकेट हस्बैंड घर में है, और वाइफ को फाइनली वो अटेंशन मिल जाता है जो रियल हस्बैंड ने कभी नहीं दिया. इनमें सवाल सिंपल है, असली प्यार वो जो रिश्तों से मिलता है या फिर वो जो रू समझता है. अब बताइए, 5000196, व्हाट अ वियर्ड स्टोरी, राइट? इट्स अ एब्सोल्युटली वियर्ड मूवी. इतनी कुछ खास चली भी नहीं थी, क्योंकि इसमें बड़े नाम हैं, बड़े सुपरस्टार्स हैं, इसलिए ये मूवी शायद लोगों को थोड़ी सी समझ आ जाए. वेल, यहाँ पर मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, और किरमानी का जो मैसेज आया है बिल्कुल सही आया है. और आज जो आफरीन ने ऐसी पहेली पूछी है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे. गुरु की आवाज़ में अगला गाना, राइट योर मिर्ची, इट्स हॉट.

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
2: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
1: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

सोनू निगम और असीस कौर की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग। आफरीन जुड़ गई है आपके साथ। और सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर चल रहा था और हर वक्त पर मतलब हर दिन पर ये वक्त पर अक्सर ये सवाल जवाब का सिलसिला चलता है। एंड वही मैं एक मूवी की कहानी अपने अंदाज में बताती हूँ और आपको गेस करनी होती है कि आखिर ये मूवी है कौन सी। और समझदार को इशारा काफ़ी है, मैंने बहुत बड़ा हिंट भी दिया था जानबूझ के। ओके, इस पिछला लिंक जिसने सुना है, मैंने जो कहानी सुनाई थी आप समझ जाओगे। तो जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो बता देती हूँ भाई, रेडियो सच के वॉल्यूम करो हाय और ध्यान से आज की स्टोरी सुनो। एक दुल्हन शादी करके ससुराल आती है, फिर दुल्हा इमीडिएटली बिजनेस ट्रिप पर निकल जाता है। तब एंट्री होती है एक भूत की। यस, भूत जो दुल्हन से प्यार कर बैठता है। हाउ वियर्ड राइट? और दूल्हे के रूप लेकर वो घर में आ जाता है। अब असली हस्बैंड तो दूर है लेकिन डुप्लीकेट हस्बैंड जो है वो घर में है और वाइफ को फाइनली वो अटेंशन मिलती है जो रियल हस्बैंड भी नहीं दे पाता। अब बताइए, एंड में सवाल सिंपल है, असली प्यार वो है जो रिश्तों से मिलता है या वो जो रूह समझता है? 5000186 इज माई नंबर। यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, किरमानी बींग द फर्स्ट, देन ताहिर, जाहिद, देन ये कौन है, राशिद का मैसेज आया है, एंड देन आई ऑल्सो हैव मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज सेइंग दैट ये जो पहेली तुम बुझा रही हो यहाँ पर आफरीन, उसका नाम पहेली है। यस, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की ये मूवी पहेली, विच वॉज एब्सोल्यूटली अ बॉक्स ऑफिस डिजास्टर। आई मीन ये कहानी सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या रियली ये कोई कहानी है मूवी की। लेकिन यस, अमोल पालेकर की ये मूवी, शाहरुख खान को जब इन्होंने पहली बार नरेट की थी तब उनका पहला ये था कि सवाल ये था, द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वॉज इफ हिज कंपनी रेड चिली कुड प्रोड्यूस द फिल्म। मतलब आई डोंट नो वाई शाहरुख खान हैड सो मच faith in this movie, and this movie in fact went on to become India's official entry to Oscars. Yes, और ऑस्कर्स के लिए ओवर स्वदेश एंड ब्लैक, वो टाइम पर स्वदेश और ब्लैक जैसी इतनी जबरदस्त मूवी थी लेकिन ये वाली मूवी भेजी गई। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। सो विद दिस, अजय और अतुल की आवाज में अगला गाना मैं सुना रही हूँ यहाँ पर। आगे बढ़ते हुए मिलती हूँ थोड़ी देर में और मिर्ची माइक से दिल तक आफरीन के साथ। इट्स हॉट

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे अरे मामू, मिर्ची हेल्पलाइन बता, सवाल क्या है?
0: मुझे स्टेडियम में मैच देखने तो जाना है, पर भीड़ नहीं पसंद, क्या करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना गोचू, तू दूसरे स्टेडियम में जाके फोन में मैच देख लेना, वहाँ भीड़ होगी ही नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची।

0: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: Well, yes, मिर्ची घड़ी का इशारा कर रहा है सुबह के 9:08 की तरफ और आपके साथ जुड़ गई है आपकी वन एंड ओनली और वेल मिका सिंह की आवाज में जो आपने अभी गाना सुना व्याह करवा दो जी, ये वो मूवी का गाना है जो मूवी आई गई हमें बिल्कुल पता नहीं लगा और इसका नाम है जवानी तो इश्क होना है. सो यस, दिस इज द नेम ऑफ द मूवी. हाँ, ये गाना वो नहीं है जो मैं बता रही हूँ आपको. वेल, ये मूवी जो है इसमें वरुण धवन है एंड समवेयर आई फील के डेविड धवन इज ट्राइंग टू रीलिव हिज 90s. प्रॉबेबली वो गोविंदा को बहुत मिस कर रहे हैं और उन्होंने वरुण धवन में ही गोविंदा बनाने की कोशिश की है प्रॉबेबली. कि वरुण धवन की इतनी सारी मूवीज आई है, स्पेशली वो मूवीज जो बहुत ही सिमिलर है गोविंदा से, जैसे ये वाली है जवानी है तो इश्क होना है, या फिर कोई भी उठा लो मैं तेरा हीरो, या फिर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एंड ऑल दीज थिंग्स. मतलब कहीं ना कहीं वरुण धवन की हर मूवी में, कूली नंबर वन ही देखो, एवरी मूवी हैज अ हिंट, इट हैज अ टिंट यू कुड से ऑफ गोविंदा एंड दिस इज व्हाट आई फील डेविड धवन इज एनफोर्सिंग ऑन हिम. अगर आप वरुण धवन की वो मूवीज देख ले जो उन्होंने खुद से की हो, जैसे मतलब अलग से की हो, वो ज्यादा बेटर लगी मुझे. बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया एंड मैनी मोर, आई थिंक सो मैनी मोर. विद दिस होपफुली इन कमिंग टाइम्स वी सी द ओजी वरुण धवन इन द मूवीज एंड नॉट अ फोर्स्ड वर्जन ऑफ गोविंदा, है ना. मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची. ज्योति नूरन की आवाज में एक लगाना और मिर्ची के साथ.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtual la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello. Hello.
4: Hello, Mr. Anil.
3: Anji.
4: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
3: तीनों आ गए?
4: सर मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास. आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
3: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
4: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
3: जी फिर
4: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए.
3: हेलो.
4: हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
3: नहीं भैया आपको गलत फहमी हो रही है, कोई आप गलत मिला है.
4: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
3: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
4: तो अनिल जी आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके.
3: कौन बोल रहे भाई?
4: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
3: भड़क रहा हूँ भाई, क्या तरीका है?
4: क्या तरीका
3: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
4: अनिल बंसल आप ही हैं.
3: अनिल बंसल मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
4: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
3: आप पहले कंफर्म तो करो, कम से कम
4: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार. आप एक बच्चा, तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
3: बात करो, एक तरीका बात करने का
4: यार, तरीका आप.
5: ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको. यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने.
3: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ
4: सर. मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने, साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता है
3: आप कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए.
4: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
3: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा ये बच्चा, समझ गया?
5: नहीं सर मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
3: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: अब देखो तो हम बाहर से, लेकिन सोचो कितनी दूरी है, कैसी ये मजबूरी है, सोचो कितनी दूरी है।
1: रणवीर सिंह की आवाज में गली बॉय का ये गाना, एंड आई मस्ट से भाई एनर्जी या फिर हाई एनर्जी का सिनोनिम अगर बॉलीवुड में किसी को कहते हैं तो वो तो रणवीर सिंह को कहते हैं अभी, लेकिन 70s और 80s में किसी और को कहते थे ऐसा? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और हम बात कर रहे हैं एनर्जी के सिनोनिम के बारे में। तो अभी तो हाँ रणवीर सिंह इज द वन, लेकिन ऐसे थे एक 70s और 80s में, मैं धुरंधर ही कहूँगी इन्हें, जिन्होंने सभी का दिल इतना जीत लिया था, मतलब इनका एक फैन बेस अलग ही था, and that is none other than Mithunda, and I'm sure so many people will agree to this ke Mithunda ki jo energy thi apne aap mein ek alag hi thi, matlab unhe legendary disco king mana jata hai bhai Bollywood mein, aur pata hai he holds the records for the most film releases as a lead actor in a single year. Yes, that was hamare one and only, that is I would say one and only Mithun Chakravarty, and aaj main unke bare mein isliye baat kar rahi hu kyunki aaj mera Bollywood birthday bash. यस, मिथुनदा का आज बर्थडे है, और 1989 में पता है मिथुनदा का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया था एज द लीड एक्टर इन अ स्टैगरिंग 19 फीचर फिल्म्स, एंड दैट रिकॉर्ड रिमेन्स अनमैच्ड अंटिल नाउ इन इंडियन सिनेमा। वेल आज का दिन मेरे ख्याल में ना आज का दिन इज फॉर ऑल दोस पीपल हु इज क्रिएटिव, हु इज टैलेंटेड, क्योंकि आज सिर्फ मिथुनदा अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, आज और दो लोगों का बर्थडे है। एक तो है इम्तियाज अली का, अनदर क्रिएटिव माइस्ट्रो आई वुड से, कि एक अलग ही इनका अंदाज है स्टोरी टेलिंग का, एक अलग ही इनका अंदाज है, एक विजन अलग है, इनकी सिनेमाटोग्राफी इज यूनिक, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, मतलब आई नेवर मिस अ फिल्म ऑफ इम्तियाज अली। और उसके अलावा आज एक और है जिनका बर्थडे है, और वो है अमाल मलिक द म्यूजिशियन। यस, वही अरमान और अमाल द ब्रदर्स, उनमें से जो अमाल मलिक है उनका आज बर्थडे है। सो बस हैप्पी बर्थडे टू ऑल दीज थ्री पीपल, मिथुनदा, इम्तियाज अली एंड अमाल मलिक। और बस अमाल मलिक की आवाज में आपको अगला गाना, अमाल मलिक का म्यूजिक और अरिजीत सिंह की आवाज में ये अगला गाना आपके लिए राइट हियर माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।

0: दोस्ती कहीं कुछ सुले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
1: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
3: खूब मिलेगा, मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन है आपके साथ अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में। यह खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी लुटेरा राइट हियर ऑन मिर्ची, और बस इस गाने के उस पार लेकर आऊंगी मेरी डायरी से कुछ चंद खूबसूरत लाइंस। बने रहिएगा मेरे साथ, यानी आफरीन के साथ माइक से दिल तक ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: और मुझसे तुम तक आने वाली ये खूबसूरत चंद लाइनें। देखिए अक्सर मैं इस वक्त पर बहुत खूबसूरत शायरी कुछ ढूंढ कर आपके लिए लेकर आती हूँ, लेकिन आज ये कविता ने मेरा दिल जीत लिया है और उम्मीद करती हूँ कि आप तक भी ये कविता के सारे जो इमोशंस हैं पहुँच जाए। तो वो कुछ इस तरह से है, ये पेड़ों की शाखें, ये खिलते कमल, ये सुबह, ये रातें, ये नज़में गज़ल, ये जुगनू, ये तारे, अंधेरा घना, ये कोयल की बातें, ये महका समा, ये खुशबू, ये मिट्टी, ये पंछी सभी, ये सूरज की गर्मी, ये बादल घने, ये बचपन की यादें, ये मीठी जुबां, ये उल्फत की बातें, मोहब्बत जवां। दुनिया में जो कुछ भी हो वो सभी, ये सारे जज्बा, ये सारी खुशी, इन सबको मिलाकर भी रख दूं अगर, तुम्हारे मुकाबले है कुछ भी नहीं, तुम्हारे मुकाबले है कुछ भी नहीं। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बस ऐसे ही बने रहिएगा, खूबसूरत गाने और खूबसूरत बातें।
1: मेरे मोहन
0: अनमिर्ची, इट्स हॉट।

रोतिका की आवाज जो हमें डुबा देती है एक अलग ही नशे में। वेल, मैं हूँ आफरीन आपके साथ। और सच कहूँ ना कि आज मुझे बहुत ही शदीद वाली भूख लगी है। यस, मतलब मैं अक्सर कुछ ना कुछ स्नैक्स बाइट्स लेकर आ जाती हूँ ड्यूरिंग द शो। कहीं ना कहीं आई जस्ट मैनेज टू हैव समथिंग, लेकिन नहीं आज तो मतलब सुबह जल्दी हुई है और अब 10 बजने वाले हैं। कुछ भी मुँह में गया नहीं है और बस इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। आप अगर अच्छा नाश्ता वाश्ता करके निकले हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं निकले हो ना तो इसको आदत मत बनाओ भाई। नाश्ता कहते हैं ना, यू शुड हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड लंच लाइक क्या था वो, एंड लंच लाइक अ सर्वेंट नहीं था, डिनर लाइक अ पुअर था, लंच लाइक व्हाट था मुझे जरा बताओ ये। ये एक सेइंग थी पॉपुलर जो फिलहाल मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रही है, लेकिन भावनाओं को समझो। ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ योर डे। सेइंग दैट आई शुड बी हेडिंग टुवर्ड्स माय ब्रेकफास्ट और बस कुछ ही देर में अंशु आपके साथ जुड़ने वाली है आपके मॉर्निंग को और भी आगे बढ़ाने के लिए खूबसूरत तरीके से। सो मीनवाइल अपना ख्याल रखिएगा और ये धूप जो है उससे बच के रहिएगा, पानी बहुत सारा पियो। बस मैं आज खाने पीने की बात कर रही हूँ तो समझ जाओ मैं कितनी भूखी हूँ। टाटा बाय बाय, सायोनारा, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम शो। माइक से दिल तक आफरीन के साथ अनवर शी इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ?
1: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: Well, Haririn ki awaaz, Swarnalatha ka saath, and what a terrific track it is. Mujhe bahut acche se wo daur yaad hai, jab ye gaana agar kisi naam se mashhoor tha, to ek dance anthem ke naam pe. Matlab, jitne reality shows mein is gaane mein performance us daur mein hue honge na, ya uske baad bhi jo trend continued raha, jo aaj tak hai, humne bahut rarely is tarah ke gaano ko ubharte hue, aage aate hue dekha hai, hai na? Mirchi Ghadi mein is waqt baj rahe hain 10:06.
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: यार मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन है ना शायद कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के लिए बहुत गजब साबित होने वाला है.
2: मिर्ची अंशु.
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ. चलिए आज जो है ना सुबह सुबह टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं. हम जानते हैं कि जिस तरह के एडवांसमेंट हमारी जिंदगी में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में अगर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इस वक्त अगर कुछ है तो वो है ऑटोमेशन. हर जगह फिंगर टिप्स में काम जो है आपके लिए काफी आसानी से होने लगता है. एंड हम सब ने इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं बहुत इंजॉय किया है क्योंकि लगता है लाइफ में कितनी सहूलियत आ चुकी है. लेकिन अगर आप आने वाले डेकेड को देखने की कोशिश करेंगे तो शायद ये बात जो है कहीं ना कहीं हमें खलने भी लगे. अब रीजन ये है, जहां पे मैन पावर रिक्वायर्ड हुआ करता था या जहां पर लोगों की आमदनी यानी कि इनकम आती थी, अब अगर ये पता चले कि वहां पे अब ह्यूमन पावर की जरूरत नहीं, उस मैन पावर की जरूरत नहीं और उसे रिप्लेस करके पूरा का पूरा हम एक रोबो के जरिए या एआई के जरिए उस काम को एग्जीक्यूट करने लगे हैं, तो आप ये सोचें कि अगर देश की इकोनॉमी की अगर आप बात करें, खासकर जरूरतमंद वो मेहनत कश लोगों की बात करें, तो उनकी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ये सिनेरियो तो मैंने आपके बीच पेश किया. इसी बात को ध्यान में रखते हुए चाइना ने इस वक्त एक नया लॉ इम्प्लीमेंट किया है और उनके मुताबिक कुछ ऐसे काम जिसमें फिजिकल लेबर की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स का यूज नहीं किया जाएगा. जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उन्हें तो अडॉप्ट करेंगे जिससे हमारी जिंदगी जो है वो आसान हो, लेकिन ना, जहां पर भी लेबर वर्क की जरूरत है वहां पर एआई या रोबोट्स यूज नहीं होंगे. आफरीन, तुम्हारा इस पे क्या कहना है?
3: वेल, ये एक हमेशा से डर तो लगा रहता है कि भाई जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जॉब्स पे खतरा होगा. लेकिन तुमने अभी जो ये खबर बताई है, अगर यही चीज लोग अडॉप्ट करने लगे हर जगह तो थोड़ा सा खतरा कम हो जाएगा. वेल, हैविंग सेड दैट, भाई एआई कुछ भी कर सकता है और बीइंग आरजेस हम ये भी सोचते कि भाई कोई आरजे आफरीन एआई बन के आ जाए, ये भी हो सकता है. और ये हम
0: वो चार्म नहीं ला पाएगा, वो आरजे आफरीन वाला चार्म जो है वो नहीं हो सकता.
3: चाहते तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बस आगे बढ़ना है टेक्नोलॉजी के साथ.
0: आपका क्या ख्याल है, क्या आपको लगता है कि आरजेस जो है अगर वो एआई ड्रिवन हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, या आपको लगता है कि आपको लाइव जॉक्स को ही सुनना पसंद है? मतलब आफरीन, अंशु, गौरव, आप इन्हें सुनना चाहेंगे या आप किसी एआई जॉक को सुनना चाहेंगे? फटाफट से फटाफट से अपने व्यूज जो है हमें भेजें. वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. 5000186 5000186. लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम Mirchi1 कतरिया Mirchi Anshu. मीनवाइल विशाल मिश्रा की आवाज एंड ये अगला गाना जन्म आपके लिए. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virpa la burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: बेटा घर आ जा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
2: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
3: बेटा आ जा, नहीं आ जा, आ जा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
2: हेलो बेटा। अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
3: देख अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा, एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते और तू चला जाएगा बेटे। क्या हो गया हमारा?
2: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
3: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
2: अंकल ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
3: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो
2: जानते। अंकल मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
3: बेटा देख ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
2: माता जी से बात करा दीजिए।
3: बेटे आजा आजा बेटे।
2: अंकल माता कहाँ है?
3: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
2: छाता नहीं अंकल, माता आप अपने कान के बात।
3: बेटे कोई गलती भैया देख तो बेटे माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
2: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
3: मेरे बात मेरे बात।
4: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
2: हेलो
3: बेटे। हेलो
2: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
3: हेलो बेटे, घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
2: अरे अंकल आपका बेटा नहीं हूँ मैं।
3: अगर आप मुझे आ जाएगा तो आज
2: आपने नंबर क्या मिलाया
3: तो कान में सुनाई दे। बेटा तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आजा बेटे।
2: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
3: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
2: क्यों?
4: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
2: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
4: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
2: बोलना जरूरी है?
4: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
3: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया, स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
1: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे, यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
2: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।

0: आवाज विशाल शिखर की कॉम्पोजिशन, फिल्म का नाम फाइटर, एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। ये गजब का गाना तो मैंने आपको सुना दिया। कहीं ना कहीं ये गाना जो है ना मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन का काम जरूर करता है। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड जैसा कि आपसे कुछ देर पहले मैंने आपसे एक बात कही कि ये जो पर्टिकुलर गाना है हीर आसमानी की अगर बात करूँ तो मेरी जिंदगी में इंस्पिरेशन का काम करता है। वैसे ये मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की जो फिल्में हैं या हमारा जो म्यूजिक है यार, ये हम सबकी जिंदगी में ना कोई गजब का रोल 101% अदा करता है। जरा सोचे ना, लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ होगा कि आप लो फील कर रहे होंगे एंड उस वक्त आपने अपनी कोई फेवरेट फिल्म देखी या ऐसा कोई गाना सुना जिसने इंस्टेंटली आपके मूड को जो है ना लिफ्ट कर दिया। कई बार कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनसे हम इंस्टेंटली रिलेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसा लगता है यार ये तो कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी की कहानी है, या ये वो फिल्म है जिसने मेरी ज़िंदगी की कहानी को पलटने में या बदलने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। चलिए जी, एक ऐसी फिल्म है जो मेरी लाइफ में वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवीज़ उस फेज में होती है जब भी मैं सॉलिड बोर हो रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिफ्रेश होना है, एंटरटेन होना है, तो ये फिल्म मैं देखती हूँ। तकरीबन आपसे अब तक कम से कम 20 बार तो देख चुकी हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर 20 बार तो और देखूंगी, नहीं से नहीं। चलिए, अब इस फिल्म का एक खूबसूरत सा डायलॉग है जो मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ, आपको सुनाने वाली हूँ, आपको सुनना है एंड मुझे ये बताना है कि ये है तो है किस फिल्म से एंड साथ ही ये जो कॉन्वर्सेशन है ये किन दो लोगों के बीच हो रही है। बड़ी प्यारी सी फिल्म है यार, जरा सुने, आइडेंटिफाई करें करेक्ट आंसर ऑन 5000 1896 एंड इसके साथ ही आई वुड रियली अप्रिशिएट योर ऑडियो मैसेज।
1: 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार।
0: भाई साहब इतना बता दें, ये जो प्लान है ना वैसे जिंदगी में काफी अच्छा काम कर जाता है। वैसे इस फिल्म का एक और डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, वो भी आपको सुनाती हूँ।
2: तुम सब कुछ एक दिन में नहीं कर सकते हैं?
1: कर सकता हूँ, ये देख सिर्फ इतना बाकी। अबे
2: अब नहीं है, बैठ जाओ चुपचाप।
1: और अगर हमें बाद में पता चला कि वो लाइट और साउंड शो सॉलिड ढांसू निकला तो?
2: वो तो होगा ही ढांसू, लेकिन अगर हम चले गए तो ये सॉलिड सनसेट मिस हो जाएगा ना। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहां है वहीं का मजा लेते ना।
0: तो बस इस वक्त अगर आप मेरे साथ हैं तो शो का मजा लीजिए, मुझे ये बताइए कि ये कॉन्वर्सेशन है तो है किस फिल्म से एंड किन दो खूबसूरत लोगों के बीच हुई है। 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल शंकर महादेवन की आवाज, कविता कृष्णमूर्ति का साथ एंड ये सुपर पावर पैक गाना आपके मूड को पूरी तरह से लिफ्ट करने के लिए आपके रास्ते अंशु के दिल से। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Well, Javed Ali ki khubsurat si awaaz and what a lovely track it is. Dekho, mana ki aapka deedar na hua, lekin aapki awaaz aur aapke messages jo mujh tak pahunche hai na, bhai sach batau, din banane ke liye wo kaafi hai. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड बस अब से कुछ देर पहले जो आवाज़ें मैंने आप तक पहुँचाई, ज़रा उसकी दास्तान एक बार फिर से सुना दें. लेकिन फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, जल्दी से मैं वो डायलॉग एक बार फिर से पेश करती हूँ जो मैंने सुनाया था. एंड आपको आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये डायलॉग है तो है किस फिल्म से. सो हियर वी गो.
1: 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार.
0: अजी ऐसी जिंदगी किसे जीनी है ना, लेकिन ऐसी जिंदगी में जो सुकून है वो किसी और चीज में कहाँ है. अब जरा ये बता दूं कि आवाम यानी कि जनता जनार्दन का क्या कहना है कि ये है तो है किस फिल्म से. हियर यू गो.
2: गुड मॉर्निंग आरजे अंशु, दिस इज मधुलिका स्पीकिंग. ये जो डायलॉग था, ये मूवी थी ये जवानी है दीवानी, और जिनके बीच में ये बातें हो रही हैं वो है आई थिंक रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण. व्हाट अ क्यूट पेयर.
0: वेल, जितना खूबसूरत इनका पैर है उतनी ही प्यारी ये फिल्म. इसके अलावा जितने लोगों ने लिख कर भी जवाब दिया, सपना, धीरेन, यूसुफ, अहमद, मोहम्मद एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर मैसेजेस, वी रियली अप्रिशिएटेड. सबसे पहले आप सबके लिए तालियां हो जाएं. थैंक यू यार. यार कुछ फिल्में जो है ना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, वो जिंदगी का एक नजरिया दे जाती है. और उन फिल्मों में से एक जरूर है ये जवानी है दीवानी. वेल, 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अयान मुखर्जी ने एंड प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने. फिल्म में अगर हमें कोई नजर आए सो वो है द क्यूटेस्ट बनी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण एस नैना, साथ ही आदित्य रॉय कपूर एंड कल्की खोचलिन. यार बनी और नैना की कहानी है ना हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी बात सिखाती है. बनी ने दुनिया देखना सिखाया, अपने सपने को जीतना सिखाया, और नैना ने बस उसके साथ कुछ पल जीना है इस बात को अपने दिल में बसाया. लेकिन यार जिंदगी का सच यही तो है, लाइफ में हम कितना भी ट्राई कर लें सब कुछ तो एक साथ नहीं मिलता. कभी सपनों के लिए कुछ लोग छूट जाते हैं और कभी लोगों के लिए कुछ सपने. लेकिन जो चीज आपको सबसे ज्यादा मैटर करती है ना वो है उन पलों को जीना जो आज हमारे पास हैं. जैसे बनी ने कहा था, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है. लेकिन साथ ही नैना ने यह भी कहा था कि कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही सही, इसलिए जहां है उस पल का मजा लेते हैं. तो इस वक्त उम्मीद है कि आपको मेरी ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है एंड हम दो एक दूसरे के साथ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं. और अगर ये बात सच है तो मुझे बस बता दो 5000 1896 5000 1896. आपके एक मैसेज का इंतजार कर रही हूं, चाहिए तो वो एक हार्ट भी चलेगा लेकिन भेजना जरूर. मीनवाइल इस फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गाना है जो मेरा सबसे फेवरेट है वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ, श्रीराम चंद्रा की आवाज शिल्पा राव का साथ. एंड एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: बलगुरु रंधावा नीति मोहन की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ पावर फैक ट्रैक इट इज. नाचना गाना झूमना बजाना ये सब कुछ होगा, बस देख तो जाओ.
1: मिर्ची अंशु.
0: Hey, what's up? Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड सबसे खास बात ये नाचने गाने की बात करें तो ये मौका एंड दस्तूर जो है हमारी जिंदगी में बहुत जल्द शामिल होने वाला है क्योंकि तारीख काफी करीब आने वाली है. वेल, इस वक्त अगर आप कतर को देखने की कोशिश करें तो जैसे ही कतर ने 13th of June को यू नो स्विट्जरलैंड के खिलाफ खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के मैच में अपना पहला वर्ल्ड कप पॉइंट स्कोर किया, ये बात आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से खुशियों की लहर जो है ना पूरे के पूरे कतर में छाई. एंड कहीं ना कहीं यार जब उस वक्त हमारा देश खेल रहा है ना तो खुशी जो है अपरंपार हो रही है. मतलब ऐसा लगता था यार कि क्रिकेट से ज्यादा प्यार हमें किसी और स्पोर्ट से हो ही नहीं सकता, लेकिन कतर आने के बाद समझ में आया कि फुटबॉल को भी हमने उतना ही अपना बनाया है. भैया वो जो है हमारा क्रिकेट सगा भाई है एंड ये जो है हमारे चाचा का वो वाला भाई है जो हमें सगे भाई से ज्यादा प्यारा है. वाला हाल जो इस वक्त हो चुका है. हैविंग सेड दैट 19th of June वो तारीख होगी जब कतर अपना अगला मुकाबला खेलेगा कनाडा के अगेंस्ट एंड इज गोइंग टू बी एट 1 PM कतरी टाइम एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड क्योंकि बात इतनी है फ्राइडे का वो दिन होगा एंड इमेजिन करें जब ये मैच खेला जाएगा तो मजा आएगा एंड कितना मजा आएगा. आई वुड जस्ट लाइक टू करेक्ट, अगर टाइमिंग की बात करूँ तो ये रात के 1 बजे है, दोपहर के 1 बजे नहीं है. तो भैया हमने जो है अपनी पूरी तैयारी कर ली है, फ्राइडे का दिन है, वीकेंड है, पूरी पलटन के साथ मिलकर रात भर जो है ना हम तहलका मचाने वाले हैं. आई एम प्रीटी श्योर कतर का परफॉर्मेंस एक बार फिर से धमाकेदार होगा, तभी तो नाचना गाना बजाना सब कुछ होगा. चलिए इस वक्त मैं आपसे एक सवाल पूछने की कोशिश करती हूँ. अगर आपकी सोच समझ को मैं परखूँ तो आपके हिसाब से वो कौन सी टीम होंगी, वो कौन सी ऐसी टीम होंगी जो सेमीफिनाले में पहुंचेंगे? आपके हिसाब से टॉप 4 टीम्स इस बार के एडिशन में फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कौन सी होने वाली है? लेट्स सी कितने लोगों के जवाब जो है वो मैच होते हैं. 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज अकाशा का साथ एंड ये अगला पावर पैक गाना फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल 2. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Milci. Iska bana, puska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Na vyet bala burka.
1: Milci, burka. हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
1: स्पीकिंग।
2: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
1: अच्छा।
2: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
1: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
2: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
2: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
1: आ सकती हूँ मैं उसमें?
2: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियां आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
1: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
2: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या? हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
1: आपका क्या है?
2: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
1: ठीक है।
2: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
1: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा, तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
2: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
1: नहीं, मना क्या कर दे, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
2: हेलो,
1: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
2: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, अब इसमें मेरी क्या गलती है?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप, और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
4: लव इज माय बिगेस्ट फियर, बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
3: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
5: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
3: Catch Officer Brown. Officer Brown. Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.

0: पर विशाल डिडलानी की खूबसूरत सी आवाज, अनुषा मानी का साथ, एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, गुलाबो। चलिए, गाना तो मैंने सुना दिया, लेकिन किसी गुलाबो की कहानी आप तक पहुंचा दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। यार, मैंने सोचा है कि आज से ना कोई एक ऐसी कहानी मैं आपके बीच जरूर पेश करूंगी जो शायद जिंदगी को जीने का और उसे देखने का नजरिया आपके लिए जरूर बदले। यार, कभी कभी ना हम जिंदगी में कुछ और बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर की असली पोटेंशियल हमें किसी और ही रास्ते पर ले जाती है। वेल, आज बात करते हैं इंडियन क्रिकेट सेंसेशन स्मृति मंदाना की। जब वो छोटी सी थी, वो बहुत ज़्यादा अपने बड़े भाई से इंस्पायर्ड थी, जो भी क्रिकेट खेलते थे और काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला करते थे। इनफैक्ट क्रिकेट शुरू करने की इंस्पिरेशन उन्हें घर से ही मिली। एंड इंटरेस्टिंगली, स्मृति का फोकस पढ़ाई पर भी उतना ही था, एंड शी वॉज कम्प्लीटली इंक्लाइंड टूवर्ड्स परसुइंग साइंस। बट उनकी फैमिली ने यह नोटिस किया कि भाई, इस बच्ची के अंदर कुछ तो खास है, कोई तो स्पेशल टैलेंट है। एंड बस वो स्पार्क को देखते हुए उन्हें फोर्स किया गया कि वो क्रिकेट फील्ड में अपनी पूरी एनर्जी लगा दें। लेकिन उन्होंने सिर्फ टैलेंट नहीं देखा, उस टैलेंट पर भरोसा भी किया, और वही भरोसा आज स्मृति मंदाना को दुनिया के फाइनेस्ट क्रिकेटर्स की लिस्ट में शामिल करता है। यार, ये बच्ची इतनी कमाल थी कि जब ये अपने भाई के सारे मैसेजेस और आर्टिकल्स अखबारों में देखा करती थी ना, तो उसकी कटिंग्स को निकाल कर अपनी एक डायरी में इकट्ठा किया करती थी और ऐसा सोचती थी कि एक दिन मैं भी इतना अच्छा खेलूंगी कि मेरा भी नाम जो है अखबार में आएगा, या तो इतनी अच्छी पढ़ाई करूंगी कि मेरा नाम जो है वो अखबार में आएगा। एंड इस बात ने उन्हें बहुत फैसिनेट किया। चूंकि इनके भैया लेफ्ट हैंडर थे, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि मैं भी जो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बनूंगी। एंड गली में क्रिकेट खेलते खेलते 11 साल की उम्र में ये बच्ची जो है अंडर 19 की कैटेगरी में शामिल हो गई। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, खासकर उन माँ बाप को जिन्हें आज भी लगता है कि करियर बनाने के लिए बच्चों की जिंदगी में अगर कुछ है तो वो है साइंस, कॉमर्स या तो फिर मैथमेटिक्स। यार, इतना समझ जाइए, हर बच्चे के अंदर एक अलग कला, अलग प्रतिभा होती है। उसे समझना और अकॉर्डिंगली उसे उस डायरेक्शन में पुश करना जो है ना, ये बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं, पढ़ाई ही जो है आपके लिए सक्सेस के हर रास्ते को खोल दे। अरिजीत सिंह की आवाज, शिल्पा राव का साथ है, नहीं अगला गाना एंजॉय। अगर बात अच्छी लगी तो मुझे एक थम्सअप तो भेज दो। 5000 1896 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। एंजॉय, बंदी का नाम अंशु। पढ़ाई ही जो है आपके लिए सक्सेस के हर रास्ते को खोल दे। अरिजीत सिंह की आवाज, शिल्पा राव का साथ है, नहीं अगला गाना एंजॉय। अगर बात अच्छी लगी तो मुझे एक थम्सअप तो भेज दो। 5000 1896 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: Mitchy wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली खूबसूरत सा प्यारा सा गाना इट इज़। ये गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन एक कोई खास बात है वो भी बता दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: Hello, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड बस मैंने सोचा कि आपके कलेजे के साथ आपके पेट में भी ठंडक लाने की थोड़ी ना थोड़ी कोशिश है ना, वो मैं कर लूँ। यार पता है क्या, इस बार ना मैं घर पे बहुत सारी रेसिपीज ट्राई कर रही हूँ, स्पेशली कुछ ऐसी खास ड्रिंक्स की जो गर्मी के दिनों में हमें हाइड्रेटेड रखने में या तो फिर ठंडक पहुंचाने में बहुत ज्यादा कारगर है। एंड आई ट्राइड समथिंग एंड आई रियली वर्कड आउट पिछले 5 से 6 दिनों के बाद नॉनस्टॉप इसे कंज्यूम करने के बाद कि मैंने सोचा क्यों ना आज रेडियो पे भी इस रेसिपी को बताया ही जाए। सो ये ना सौंफ एंड मिश्री के पानी के बारे में तो आपने सुना होगा। मिश्री यानी कि लंप शुगर, खासकर वो जो धागे पे लिपटी हुई मिश्री आती है ना, अगर वो आप ले लें तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, जितनी क्वांटिटी में आप मिश्री ले रहे हैं उतनी क्वांटिटी में आपको सौंफ लेना है, सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। अब इसमें डालनी है थोड़ी सी काली मिर्ची, एकदम जरा सी। अगर 100 ग्राम सौंफ है तो मान के चले आपको 10 ग्राम इसमें काली मिर्ची डालनी होगी। एंड इसके अलावा ज़रा सा काला नमक, और इन सब का अच्छा सा मिक्सचर बना के रख लेना है। अगर आपको लगे कि आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो थोड़ी सी इसमें इलायची भी डाल दें। और ये जो पाउडर है ना, ये आप इसे स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 2 से 3 महीने तक, फ्रिज में रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी गर्मी के मौसम में काम आएगा। एंड अगर आपको लगे कि जब भी आपको कुछ हाइड्रेटिंग पीना है तो बस एक चम्मच, छोटा चम्मच आपको इस पाउडर का लेना है, उसमें एक ग्लास पानी में डालना है, थोड़े से बर्फ डालना है, मिक्सी में अच्छी तरह से इसे फेंट देना है, जरा सा नींबू डाल देना है। एंड इसके बाद इसे स्ट्रेन कर लें। एंड अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा दाने दाने वो दरदरे यू नो वो फीलिंग टेक्सचर पसंद है तो आप स्ट्रेन भी फीलें, आई टेल यू यार ये इतना हाइड्रेटिंग है, जो जेन्युइनली जलन होती है या जो गर्माहट लगती है ना आपको बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक कम होती हुई नजर आएगी। एंड आई जस्ट थरली एंजॉयड दिस ड्रिंक। अगर आपको लगता है कि रेसिपी एकदम डिटेल में चाहिए, मुझे फटाफट से व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजो और मैं आपको डिटेल रेसिपी जो है इसकी भेजती हूँ। जो रेडियो में बताया था वो एक ऑडियो मैसेज में रिकॉर्ड करके भेजूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। ट्राई आउट करना एंड मुझे बताना कि लगा तो लगा कैसा। यू कैन कंज्यूम इट ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द डे, आई प्रेफर इट यूजुअली इन द मॉर्निंग्स और इन द आफ्टरनून व्हेन आई हेड होम, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। बाकी आप कुछ घर पर अच्छा बनाओगे तो मुझे जरूर बुलाओगे, ये वादा आपकी तरफ से मैंने ले लिया। उदित नारायण की आवाज, अलका याग्निक का साथ, फिल्म का नाम मिशन कश्मीर। इन मिशन अंशु में ये प्यारा सा गाना अगला आपको सुना दिया जाए। गाना पसंद आया तो थैंक यू मैसेज वेटिंग। स्टूडियो टू मची, बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? रेडियो पकड़ के खड़े रहना या फिर?
3: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
2: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्ड आई, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड आई,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सचदेव एंड तुलसी कुमारी की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। ये प्यारा सा गाना था उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन ये अच्छी सी खबर भी आप तक पेश कर दी जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आज अंशु विद यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ एंड इसके साथ ही हाला समर में हम सब के लिए हाला हाला क्या क्या लाइनअप है ये बात आप तक पहुंचा ही दी जाए। वेल, दिस समर इज गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग हियर इन दोहा। यहाँ पे आपके लिए एक वेकेशन मोड सेटअप किया जाएगा जो जेन्युइनली आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। देखिए यार, अगर जुलाई एंड अगस्त की बात करूँ, इन दो महीनों की छुट्टियों में आप पूरे के पूरे दो महीने तो बाहर नहीं रहने वाले, या तो आप जुलाई में जाएंगे या तो आप अगस्त में जाएंगे, एक ना एक महीना तो यहाँ रहेंगे। एंड जो मंथ आप यहाँ रहेंगे, इससे पहले कि बच्चे घर पे और आपकी जिंदगी में तांडव मचाए, हम जो है उन्हें बाहर ले जाने का पूरा इंतजाम जो है ना आपके लिए कर ही देंगे। वेल, अगर मैं कतर टॉय फेस्टिवल की बात करूँ तो आप सबका सबसे बड़ा एडिशन इस बार आपको कतर में देखने को मिलेगा। 1 जुलाई को एक स्टार्ट होगा एंड इट इज गोना रन अंटिल द एंड ऑफ द मंथ। एंड सबसे खास बात यह है कि दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इस बार आपका दिल जो है ना बच्चा बनने में मजबूर हो जाएगा, क्योंकि टॉय फेस्टिवल में बच्चों के अलावा बड़ों के लिए भी बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटी होगी एंड इस बात का ऐलान जो है वो हो ही चला है। तो जरा देखते हैं क्या कुछ खास है जो हम सबके लिए होने वाला है। मैं तो कहती हूँ एक आध दिन अपन सब मिलकर चलेंगे, बड़ा मजा आएगा जी। बच्चे जो है व्यस्त रहेंगे और हम जो है व्यस्त रखने में कहीं कोई कसर ना छोड़ेंगे। तो ये तो बात हो गई एक इवेंट की जिसकी कहानी मैंने आप तक पहुंचा दी एंड अब बाकी की कहानी सुनने के लिए एक ही काम करना है, टिक के बने रहना है, सुनते रहना है कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का

0: Well, Vishal Didlani ki khubsurat si awaaz aur what a lovely track it is. Sonu Kakkar ka saath and ye Coke studio version and I am absolutely loving it. Mirchi Anshu. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, zindagi mein mithas ke saath spice ka tadka main to laga rahi hu, lekin iske saath hi garmi ka kehar jo hai na hamari life mein koi aur dha raha hai. And I'm talking about Suraj Chachu. Bhai saab, garmi hai and kya kamal garmi hai. And sach kahun, shaam ke waqt us waqt jo lu wali feeling hai na, aap bilkul mehsoos kar sakte hain jab garma garam hawa jo hai aapko chhu kar guzarti hai na kaleje ko thandak nahi milti, na hi aapke baal udte hain. Is waqt agar kuch hota hai to skin mein wo natural foundation ki layer lagti hai and jo aapke shade se ek शेड और भी ज़्यादा डार्क होता है. नहीं, मुझे वो वाला कलर लगाना अच्छा नहीं लगता है स्किन में. अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखें यार. टेम्परेचर जो है बिल्कुल 50 के आंकड़े तक पहुंच चुका है. खूब ख्याल रखें, खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें एंड इसके साथ ही कलेजे दिमाग के ठंडक के लिए टिक्के बने रहें. सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.
1: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब. फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813.

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La vieja la burga. Milchi, burga.
1: Hallå? Hallå?
2: Ja, vad fan är det?
1: Hallå,
2: vad fan är det? Hallå, vad fan är det? Hallå, vad fan är
1: det?
2: अब मुझे मुझे आप बताया उसने कि तू भी यार तू एक नंबर का आइटम मेरे
1: भाई
2: मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था अबे मुझसे कह रहा
1: अबे भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा है क्या बात है
2: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने
1: अबे भाई कौन लताशा
2: नताशा यार नताशा को प्रपोज नहीं किया
1: अबे भाई कौन लताशा मैं तो लताशा को जानता भी नहीं
2: तो तू पहले मुनी फाड़ सकता था
1: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई तू तो हंसता ही रहा
2: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था मैं तो हंस रहा था तू तो चुप था बता देता मुझे मैंने नताशा को नहीं छेड़ा मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा है मेरी
1: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा अबे तो सुनने का मौका नहीं दिया मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ
2: तू तू शुरू में कह रहा था कि मैं नहीं बोल रहा मैंने नताशा को नहीं छेड़ा रॉन्ग नंबर लग गया ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या पांच साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा
1: फोन तूने करा तूने
2: मैंने क्या फोन मैंने क्या तो तेरे हाथ में तो था तेरे मुंह में जुबान नहीं थी तू ये दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से
1: मैं तो पूछा वो तू बोल कैसे रहा भाई
2: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया आपका लग गया मैं आपका मुर्गा बना रहा था थोड़ी सी मजाक करिए वो अच्छी खासी
1: तो भाई ये बात पहले बता देते यार इतना तुमने हंसवा दिया टेंशन अलग दे दिया
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट इट्स हॉट

0: वैसे इनकी नजरों से कुछ बचा है? ये तो नामुमकिन है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ ही चुकी हूँ. वैसे इस शख्स की आंखों से कुछ बचे, हाय ये तो पॉसिबल ही नहीं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अवर मॉम्स, मम्मा, वो इंसान जो बचपन में हमें दुनिया दिखाती, नामुमकिन है.
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ ही चुकी हूँ. वैसे इस शख्स की आंखों से कुछ बचे, हाय ये तो पॉसिबल ही नहीं. एंड आई एम

हमारा इतना ख्याल रखा, हर वक्त अपनी आंखें हम पे तैनात रखी, क्यों ना उनकी नजरों का थोड़ा ज्यादा ख्याल हम रख ही लें। तो मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 के आई वर पार्टनर है ना अल फहद ऑप्टिक्स। क्लियर विजन, स्टाइलिश फैशन और परफेक्ट प्राइसेस के साथ अल फहद ऑप्टिक्स में मिलता है कंप्लीट आई केयर सॉल्यूशन। एंड सबसे खास बात, फ्री आई चेकअप अवेलेबल है इनकी हर एक ब्रांच पर। And plus, they are a direct partner with Al Coot Insurance, making quality eye care even more accessible. तो इस मिर्ची मम्मी अवार्ड्स पर सिर्फ मम्मी की मुस्कान ही नहीं बल्कि उनकी नजरों का ख्याल रखने का पूरा काम जो है हमें करना है। Visit Al Fahad Optics today or call 555-6189. Stay tuned to Mirchi. Vandika Ram, Anshu. Enjoy.

0: victory wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi, ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: सुनीति चौहान का साथ एंड व्हाट अ लवली पावर पैक ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म ये जवानी है दीवानी, मेरी सबसे फेवरेट मूवी एंड साथ ही मस्त वाला गाना। ये तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा मस्त है उसकी बात हो जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: हेलो, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने मैं तो आ ही चुकी हूँ, लेकिन साथ ही कोई तो अच्छी वाली खबर है जो आप तक पहुंचा दूं, इसकी कोशिश मैं कर ही रही हूँ। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट आज के गजब एक्सचेंज रेट्स। तो जरा देखिए कि आईपी मनी में आज का पैसा क्या ही बोलता है। वैसे अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.95, लंदन रुपीज 92.09, पाकिस्तानी रुपीज 76.75, नेपाली रुपीज 41.49 एंड साथ ही बांग्लादेशी टका 33.76। सच कहो यार, जब तक कमाना शुरू ना किया था, जब तक कतर ना आए थे, तब तक तो हम जो है ना बस डॉलर के रिटर्न में अपना रेट देख लें वो काफ़ी हुआ करता था। लेकिन आज की रेट में हर दिन जिस तरह से हम रेट्स मॉनिटर करते हैं ना भाई, समझ में आता है कि ज़िंदगी में पैसे की अहमियत है और कितनी है। और इसके अलावा भाई, ये जो छोटी सी खुशी है ना, जो अपरंपार वाली खुशी इवेंचुअली देती है, वो बहुत मायने रखती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा पैसा, थोड़े से एक्सचेंज रेट्स। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना खुशियाँ जो है बहुत बड़ी बातों की मोहताज नहीं होती यार, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन खुशियाँ जो है बड़ी दे जाती हैं, बस उन्हें ढूंढने की और महसूस करने की देरी है। क्या कहती पब्लिक? एक्सचेंज रेट्स इज ब्रॉट टू यू बाय
1: लाया आई पे बेस्ट एक्सचेंज रेट्स, भेजो खुशियाँ और पैसे दोनों ही घर पे।
0: Well, जोश पर की आवाज पर अमृता टंडन का साथ, अगला गाना एंजॉय, फिल्म का नाम बागी 4, अंशु का नाम अंशु। एंजॉय।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100 on 100 impersonation of Sanjay Dutt. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Bol Dal, Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: यार बचपन में कैसे 2 रुपए लेकर मैं चिज्जी लेने जा रही हूँ ऐसा कह के घर से निकल जाया करती थी और 2 रुपए में ही सामान लेकर घर वापस भी लौटाया करती थी। अब जमाने बदल गए यार।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और नहीं तो क्या यार, 2 रुपए लेकर जाते थे तो पता था कि 2 रुपए में क्या आने वाला है और वही चीज लेकर आते थे। आज के टाइम पर तो यार 5,000 भी कहाँ जाते हैं ना, पता ही नहीं लगता। और फिर ऐसा भी लगता है कि अरे यार जो लेना था वो तो लिया ही नहीं, काम की चीज तो कुछ ली नहीं, लेकिन ये 5,000 रुपए कहाँ उड़ गए। और आज ना ये जो EMIs के टंटे, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट, फलाने ढिमाके, ये सारे चोचलों में जब हम फंस गए ना, मैं आज भी वही दिन याद करती हूँ जब हम चिज्जी लेने से मतलब रखा करते थे कि यार 2 रुपए मिले, 5 रुपए मिले या 10 रुपए मिले, ना उसमें सेविंग्स का पैसा लगता था, ना उसमें EMI जाती थी, ना कोई और पेमेंट करनी होती थी, सिर्फ एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करते थे हम, और वो है अब यार इसमें कौन सी वाली चिज्जी आएगी। चॉकलेट लेनी है, चिप्स लेनी है, कैंडी लेनी है, नटखट लेना है, इलू इलू लेना है, क्या लेना है बोलो तुम। हर एक बजट में आप चिज्जी खरीद सकते थे। आज के टाइम की तरह नहीं है कि अगर आपको कुछ लेना है तो 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा कि यार इतने पैसे बचेंगे तो आप वो चीज ले पाओगे। हाँ, लाइफ वॉज वेरी सिंपल बैक देन यार, नहीं क्या। और कहते हैं कि सिंपलिसिटी इज ब्यूटी, तभी तो बचपन हमें इतना खूबसूरत लगता है। चलो फिर उसी जमाने में चलते हैं, यानी कि 90s के जमाने में। मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डाल रही हूँ मैं, और आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milci, burka.
1: Hello. Hello.
2: Hello, Mr. Anil.
1: Anji.
2: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
1: तीनों आ गए?
2: सर मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास. आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
2: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
1: जी फिर?
2: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद. एक सेकंड रुकिए.
1: हेलो.
2: हाँ सर, एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
1: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है कोई, आप गलत मिला है.
2: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
1: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
2: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके.
1: कौन बोल रहे भाई?
2: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
1: बड़ा आप रहो भाई, क्या तरीका है?
2: क्या तरीका
1: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
2: अनिल बंसल आप ही हैं.
1: अनिल बंसल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी से कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
2: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
1: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम.
2: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप, एक बच्चा तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
1: बात करो, एक तरीका बात करने का
2: यार, तरीका आप.
3: ओ बच्चा चुप हो जाओ, गुस्सा आ गया उनको. यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने.
1: मैं काम कर रहा हूँ बैठा, वो आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठा.
2: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने, साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता है,
1: कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, फिर मुझे नहीं चाहिए.
2: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
1: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा ये बच्चा, समझ गया?
3: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
1: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: 90s बॉलीवुड की फिल्मों के टाइटल्स सिर्फ टाइटल्स नहीं थे बॉस, पूरे एसेज हुआ करते थे।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Zara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And those were the days जब फैशन ही लंबी लंबी मूवीज के टाइटल्स का होता था। And no one dared to release a movie जिसका one word नाम हो। और यही वो मूवीज हैं जो आज भी हमें डमशराज खेलने में बड़ा मदद करती हैं और हमारी टीम को जिताती हैं। And I've decided कि मैं आपको कुछ ऐसी ही फिल्मों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आज, जिनके नाम या तो हमने डमशराज में सुने हैं, नहीं तो आगे ये नाम हमें डमशराज जीतने में मदद करेंगे। जिस देश में गंगा रहता है, ये मूवी याद है आपको? मुझे डेफिनेटली याद है। गोविंदा, सोनाली बेंद्रे और रिंकी खन्ना की ये मूवी, वो दौर था जब गोविंदा की फिल्में फ्लॉप हो रही थी और ये फिल्म इस लिस्ट में एक और नाम था। ये महेश मांजरेकर डायरेक्टेड पहली कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन शुक्र है इसके फ्लॉप होने के बावजूद उन्होंने कॉमेडी फिल्म्स बनाने का आइडिया ड्रॉप नहीं किया और ऐसे ही ये फिल्म हमारे डमशराज की लिस्ट में शामिल हो गई। और अगर अभी तक आपने इस फिल्म का इस्तेमाल नहीं किया है ना, तो मैं तो कहती हूँ अगली बार के लिए डेफिनेटली याद रखना इस फिल्म का नाम। आओ चलो इसी बात पर आपको बिग बॉस, ओहो आई मीन यस बॉस का ये प्यारा सा गाना सुनाती हूँ, कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
0: आएंगे दीदी. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: आपने अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? इस फिल्म का नाम तो सुना ही होगा।
1: सारा ज़माना है सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, हम मिलेनियल्स ने जब जब डमशराज खेला है, इस फिल्म के नाम का इस्तेमाल डेफिनेटली किया है। और जो सवाल हम पूछते आ रहे हैं डमशराज में, वो यही है कि ये फिल्म एग्जिस्ट भी करती है क्या? एंड द जवाब इज यस, करती है। और मैंने सोचा है कि मैं आपको डमशराज की वो फिल्मों के टाइटल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आज, जिन पर आज तक हमने सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाया है। दिस फिल्म स्टार्ड नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी एंड स्मिता पाटिल। और ये एक आर्ट फिल्म थी जिसमें बात नसीर साहब के कैरेक्टर के गुस्से को लेकर की जा रही थी, जो गुस्सा करते करते अपने गुस्से की वजह से समझता चला जाता है और उसे ये पता लगता जाता है कि जो गुस्सा वो पहले गरीबों पर करता था, वो उसे डिजर्व नहीं करते हैं। डिजर्व तो सिर्फ अमीर करते हैं। और इसी चक्कर में अल्बर्ट पिंटो के जो गुस्से का मकसद और मतलब था, वो बदल जाता है, लेकिन गुस्सा वो चलता चला जाता है। इसी के साथ बॉस, अब मदहोश होने का टाइम आ गया है, क्योंकि कमिंग अप कुमार सानू की आवाज में ये गाना फ्रॉम द फिल्म कभी हाँ कभी ना। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ?
1: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
2: साले का खोपड़ी तोड़ ले, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: जाए परेशान ना जाए, साउंड्स लाइक अ डायलॉग, लेकिन ये अर्ली 2000s की एक फिल्म का टाइटल है जो कि डमशराज में अक्सर इस्तेमाल होता है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sarah, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं पुरानी उन सारी फिल्मों की बात करूंगी जिनके टाइटल्स हमने अक्सर डमशराज में इस्तेमाल किए हैं या फिर सुने हैं, लेकिन सवाल भी किए हैं कि क्या ये फिल्म वाकई में एग्जिस्ट करती है। एंड यस, ये फिल्म एग्जिस्ट करती है। टेलीविजन एक्टर अमन वर्मा का ये पहला मूवी ब्रेक था और इस मूवी में, जिसमें कि एक्टर्स की लंबी लाइन है, इसमें काम किया है काफी सारे मराठी थिएटर आर्टिस्ट्स ने। नम्रता शिरोडकर, रवीना टंडन, दिया मिर्जा, सुष्मिता सेन का स्पेशल अपीयरेंस एंड महेश मांजरेकर। ये फिल्म टीवी पर खूब हिट हुई थी क्योंकि तब टीवी पर ये नया नया ट्रेंड शुरू किया था जी टीवी वालों ने कि रीसेंट मूवीज टेलीकास्ट की जाएंगी, और ये मूवी इसी एक्साइटमेंट में हिट हो गई। और अब एक जबरदस्त बात होने वाली है क्योंकि जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ ना, वो है ही ऐसा। निगम की आवाज में कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vieta la burka. Mirci, burka.
2: Hello.
3: बेटा अब घर आ जा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
2: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
3: बेटा आ जा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
2: हेलो
3: बेटा।
2: अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
3: देख, आपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा, एक तो बुढ़ापे में तो ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चला गया गालो बेटे, क्या हो गया हमारा?
2: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
3: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
2: अरे अंकल ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
3: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते
2: हैं। मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
3: बेटे देख, ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
2: माता जी से बात करा दीजिए।
3: बेटे आजा बेटे।
2: अंकल माता कहाँ है?
3: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
2: छाता नहीं अंकल माता, आप अपने कान के बात।
3: बेटे कोई गलती हो या देख तो बेटे माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
2: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
3: अरे बात मेरे बात,
4: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
3: हेलो, हेलो
2: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
3: वैसे घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
2: अरे अंकल मेरे बात कर, बेटा नहीं मैं,
3: अगर आप मुझे आ जाएगा तो आज
2: आपने नंबर क्या मिलाया?
3: मैं तो कान पर सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे।
2: अरे अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
3: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
2: क्यों?
4: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्लाई रहे हो भाई?
2: भाई मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
4: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
2: बोलना जरूरी है?
4: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
3: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, this is me, Zara. आपकी 90s की यादों का पिटारा और अभी मैंने भी आपके लिए कुछ पिक किया है. Well, actually, मैंने अपने प्लेलिस्ट के बागान में से दो गानों को पिक करके उनको आपस में मिला जुला के एक बास्केट में डाल के अब मैं आपके आगे वो उसको पेश करने जा रही हूँ और आपको बताना है कि ये जो दो गाने मिले जुले मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये कौन से हैं. तो रेडी स्टेडी टेक गो.

ओके एज सिंपल एज इट इज, आपने बस इतना करना है कि डीएम करना है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, आपका नाम, आपके शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे फटाक से झटाक कर दो। मिर्ची सारा इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, हाँ याद रखना, एंड स्टे ट्यून्ड रहो टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
1: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
2: बहुत कुछ होगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्रिमिनल मूवी का ये गाना जब टेलीविजन पर आता था ना, तो हमारे बड़े कहते थे बच्चा पार्टी आंखें बंद कर लो, क्योंकि तब चैनल चेंज करने का तो ऑप्शन ही नहीं हुआ करता था ना। देयर वाज ओनली DD1, और जब काउंटडाउन शो देख रही है पूरी की पूरी फैमिली, तो बच्चे तो वहां मौजूद होंगे ही होंगे।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। Well, this gaana was sizzling hot अपने टाइम में, लेकिन जितना ये वीडियो के हिसाब से sizzling hot था, उतना ही प्यारा ये सुनने में भी है।

रोंगटे तो आज भी खड़े हो जाते हैं यार इस गाने की म्यूजिक सुन के। लेकिन इस गाने की ये जो सिग्नेचर म्यूजिक है, जो कि इस गाने के बाद हमें कहीं सुनाई नहीं दी, और ऐसा कोई गाना ऐसा लगा ही नहीं कि फिर बना होगा। एक्चुअली ये गाना ऑलरेडी पहले बन चुका था। यस, क्योंकि ये गाने की म्यूजिक इज एक्चुअली अ कॉपी फ्रॉम एन इंग्लिश बैंड का गाना जिसका कि नाम था एज ऑफ लोनलीनेस।

और यहीं से हमारे फेवरेट गाने को म्यूजिक मिली थी। वेल, अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई मूवी या फिर कोई गाना कहीं से उठाया गया है और कट कॉपी पेस्ट किया गया है, तो DM करिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची।

0: Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
2: अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
1: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बिस्तर बंद, ये याद है आपको कि ऐसे भी कोई चीज हुआ करती थी हमारी लाइफ में कभी?
2: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और 90s में सर्दियों में इंडियन रेलवे से ट्रैवल करने का मतलब पूरे जिंग बैंग के साथ ट्रैवल करना। कंबल, तकिया, चादर, पतली पतली रजाइयां, और ये सब बंद होता था एक आर्मी ग्रीन कलर के कैनवस वाले कवर में, जिसे हम बिस्तर बंद कहा करते थे। ये सामान ना सबके ट्रैवल का हिस्सा हुआ करता था। आई रिमेम्बर सर्दियों में जब हम नानी के घर जाते थे ना, तो हमारे रूम के एक कोने में इसे भी जगह देनी पड़ती थी, और ये कमरे में बीन बैग का काम किया करता था। कट टू आज का ट्रैवल, विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वी सी पीपल ट्रैवलिंग कम से कम सामान के साथ, एकदम हैसल फ्री। आज का रेलवे तो इतनी तरक्की कर चुका है कि खाना हो या बिस्तर, हर चीज मिल जाएगी आपको ट्रेन के अंदर। यार, घर से लेकर आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यार, सर्दियों में स्लीपर में ट्रैवल करना बड़ा बर्फीला हुआ करता था, नहीं? स्पेशली फॉर दोस्त जो खिड़की की सीट पर सोते थे। भाई, शटर के नीचे एक हल्की सी लाइन जहाँ से हवा घुस घुस कर आती थी, ये वही थी जिससे एक ही रात में हमारी नाक जम जाती थी। लेकिन एक बात तो है यार, आज भले ही हम ट्रेन्स और फ्लाइट्स में पहले से बहुत ही लाइट ट्रैवल करते हैं, लेकिन इमोशनल बैगेज कुछ ज्यादा कैरी नहीं कर लेते हैं। जरा उसे भी तो कम करें। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
2: स्पीकिंग।
3: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
2: अच्छा।
3: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
2: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
3: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
3: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
2: आ सकती हूँ मैं उसमें?
3: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियाँ आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
2: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
3: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं, या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
2: आपका क्या है?
3: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
2: ठीक है।
3: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
2: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा, तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
3: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
2: नहीं, मना क्या कर दे, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
3: हेलो,
2: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
3: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, जिसमें मेरी क्या गलती है।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear haathon par lagne wali chand wali mehndi.
2: Yaadon ko chitthi.
1: तो हमारी लाइफ में इस बात की निशानी थी कि लाइफ इज सिंपल। जब लाइफ सिंपल हुआ करती थी तो मेहंदी के डिजाइंस भी सिंपल हुआ करते थे। और ये बात भी बड़ी सिंपल थी कि त्योहार हो या शादी, मम्मा लोहे की कढ़ाई में पहले ही मेहंदी भिगो दिया करती थी, फिर सारी लड़कियां लाइन से बैठकर मेहंदी लगवा लिया करती थी। ना इस बात की टेंशन कि मेहंदी वाली आएगी या पूरी पलटन उसके पास जाएगी, और ना इस बात की टेंशन कि कौन सी लड़की कौन सा डिजाइन लगवाएगी। ना ये कॉम्पिटिशन होता था कि तेरी मेहंदी दिखा, तेरी तो ज्यादा अच्छी है और मेरी नहीं। और ना ये सर दर्द होता था कि मेरी मेहंदी के डिजाइन में जी इधर जाली वाला डिजाइन और इधर मोर पंख बनाना। कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, ओनली सिंप्लिसिटी। और तब आसमान में चांद भले ही अधूरा हो लेकिन हमारी मेहंदी में पूरा हुआ करता था। तुम्हें बचपन में चांद का टुकड़ा मानने वाली, आज दिल का टुकड़ा मानती हुई तुम्हारी सारा। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: Victory wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Cassette ke side B ka panchwa gana.
2: Mirchi 90s cassette.
1: जब मूवी के टाइटल में ही सुर है तो गानों में कैसे नहीं होगा। लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना जिसे कंपोज किया है MM किरावनी ने।

और इस गाने के कंपोजर वही हैं जिन्होंने इस गाने की म्यूजिक देने के कई सालों बाद एकेडमी अवार्ड जीता फॉर द सॉन्ग नाटू नाटू। वैसे एक बात बताओ, कभी मोहब्बत में पढ़ के आपने इस गाने के बोल की तरह सुबह का इंतजार किया है क्या? अरे मोहब्बत में रात काली ना की तो क्या किया, व्हेन यू नो कि अगली सुबह ही उस दिन की शुरुआत है जहाँ कई नई यादें बनने का इंतजार कर रही है। इस फील से अगर इस गाने को सुनो ना तो और ज्यादा फील आता है। और अभी हम जाता है इट्स टाइम फॉर मी टू से हम हराए प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। लेकिन यहाँ के अलावा मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी बाय द नेम मिर्ची सारा। आप अपना ख्याल रखिएगा और फिलहाल के लिए ये गाना आपके लिए आ रहा, स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। तो एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: दिस इज एन ऑडियो इम्पर्सनेशन, बट आई हैव टू से गुलशन ग्रोवर, इट इज 100 on 100 इम्पर्सनेशन ऑफ संजय दत्त। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.

मेरा सब कुछ तो अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस

0: హలో మిర్చీ హెల్ప్ లైన్.
1: అరే అరే మామూ, మిర్చీ హెల్ప్ లైన్ బతా, సవాల్ క్యా హై?
0: मुझे स्टेडियम में मैच देखने तो जाना है, पर भीड़ नहीं पसंद, क्या करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना गोचू, तू दूसरे स्टेडियम में जाके फोन में मैच देख लेना, वहाँ भीड़ होगी नहीं.
2: ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट.

0: আমি যে তোমার নাম হে আমার
1: মস্ত মোলা মস্ত মোলা গৌরব মস্ত মোলা গৌরব।
0: वैसे हवा कुछ इस कदर चल रही है आज, लगता है मौसम भी फुल मूड में है आज। जो बाल सेट करके निकले थे स्टाइल दिखाने, अब वो टोपी धूप में उड़ रही है यार। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जबरदस्त हवाएं और इन हवाओं के बीच गर्मी के लू के थपेड़े वाली फीलिंग हम सबको मदमस्त कर रही है। पानी पीते रहो, तबीयत ना खराब हो इसका ध्यान रखो। शाम के 4:05
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा, जबरदस्त हवाओं की रुख के साथ बातों का रुख लेकर आ गया मस्त मौला गौरव। और अगले 4 घंटे में आपके साथ बहुत सारे अनाउंसमेंट होगी, लेकिन सबसे बड़ी अनाउंसमेंट यह है कि मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 के डेट आ गई है। यस, वो खबर जिसके लिए वो टॉप 15 या इनफैक्ट 16 फिनाले की जो कंटेस्टेंट है वो बेकरार है। यस, द डेट इज 20th ऑफ दिस मंथ, दैट इज सैटरडे। यानी कि अब मॉमीज के पास बहुत कम टाइम बचा है, बेस्ट प्रिपरेशन कीजिए। एंड कैसे क्या होगा, कैसे सब कुछ चलेगा, सब कुछ यहीं पता लगेगा। कान लगाई लो, मिर्ची का वॉल्यूम बढ़ाए लो, आ गया मस्त मौला गौरव। शाम शानदार करने, ऊंचे लंबे कद के हो तक लगाना आपके लिए। इट्स

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga. Aga.
2: Alo? Alo?
3: Ama vad är du? Ama mujhe ab pata chala tu.
2: Hello, bhai, kaun bol raha hai? Hello, kaun bol raha hai, bhai?
3: Ab mujhe ab bataya usne ki tu bhi yaar tu ek number ka item. Meri
2: bhai.
3: मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था. अबे मुझसे कह रहा
2: बता तो
3: अबे
2: भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा है क्या बात है.
3: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने.
2: अबे भाई कौन लताशा?
3: नताशा यार, नताशा को प्रपोज नहीं किया?
2: अबे भाई कौन लताशा, मैं तो लताशा को जानता भी नहीं.
3: तो तू पहले मुनी फाड़ सकता था?
2: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई, तू तो हंसता ही रहा.
3: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था? मैं तो हंस रहा था, तू तो चुप था. बता देता मुझे, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया. मैं हंसे जा रहा हूँ, हंसे जा रहा हूँ की तरह. नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा है मेरी.
2: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा है? सुनने का मौका नहीं दिया, मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ.
3: तू शुरू में कह देता कि मैं नहीं बोल रहा, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, रॉन्ग नंबर लग गया, ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या? पांच साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी. तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा?
2: फोन तूने करा, तूने करा?
3: मैंने क्या फोन, मैंने क्या? तो तेरे हाथ में तो था, तेरे मुंह में जुबान नहीं थी. तू ये दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से.
2: मैं तो पूछा वो तू बोल कैसे रहा भाई?
3: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया, आपका लग गया, मैं आपका मुर्गा बना रहा था, थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी.
4: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ.
1: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट.
5: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी.
1: Catch Officer Brown. Officer Brown. Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.

0: और भाई हमारे टॉप 16 कंटेस्टेंट्स को भी नजर ना लगे भाई, अभी तो फिनाले की बारी आ गई है। यस, आपके साथ है वो शख्स जिसका नाम है और जब मैं आपके साथ हूँ तो बता दूं, और धीरे धीरे कर आज आप यहाँ सारी मिर्ची मॉमीज को सुनने वाले हैं, क्योंकि मिर्ची मॉमीज का ग्रैंड फिनाले जो कि इस सैटरडे होने जा रहा है उसके लिए थोड़ी तैयारियां हो रही है। और ऐसे में हमारे मिर्ची स्टूडियोज में मम्मीज का आना शुरू हो चुका है। एंड मिर्ची मॉमी की कंटेस्टेंट है हमारे साथ उर्मी माला। उर्मी माला, प्लीज कम हियर, वेलकम टू मिर्ची स्टूडियोज। कैसा लग रहा है सबसे पहले तो बताइए टॉप 16 में आके?
1: थैंक यू सो मच, ये बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है।
0: एंड ऑडिशन राउंड में जब आए थे तो क्या सोचकर आए थे, यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या सोचा था?
1: पहले तो कंपटीशन बहुत ज्यादा था, ग्रुप में इतने सारे लोग थे, लग ही नहीं रहा था कि कौन क्या मतलब अपने होता है ध्रुव का पत्ता लेके आएगा। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा वहाँ, कॉन्फिडेंटली फर्स्ट मैं ही थी, कुछ सोचे बिना बस मैं उतर गई थी अपनी बेटी के साथ और मैंने कोशिश करी, अपना बेस्ट दिया। दैट्स व्हाई आई एम हियर आई थिंक।
0: एंड यू वर द फर्स्ट कंटेस्टेंट टू गो ऑन द ऑडिशन राउंड और आज आप यहाँ मिर्ची स्टूडियोज में भी पहली कंटेस्टेंट है जो रेडियो पर जा रही है। और मी, यू कम फ्रॉम व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया?
1: फ्रॉम असम।
0: असम ही? ओह वाओ। कुछ गाना आपका, कोई लोकल फोक अगर दो लाइन, क्योंकि मुझे पता है वहाँ का टैलेंट है, सब ऑलमोस्ट गाना गा लेते हैं।
1: जी मैं जुबिन गर्ग का ही सॉन्ग
0: गाऊंगी,
1: बिकॉज वो हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं उनका एक ऐसे में सॉन्ग गाऊं।
0: प्लीज प्लीज।
1: ओके, आवाज बैठी है,
0: चलेगा चलेगा।

0: लगता है उर्मी आप तो टैलेंट राउंड के लिए अभी से तैयारी कर रही है कि क्या आपको करना है. वेल वंडरफुल वॉइस एंड आई एम श्योर उर्मी यू आर वन ऑफ द बेस्ट टॉप कंटेस्टेंट एंड फिनाले में आप पहुंच चुकी हैं. ऑल द बेस्ट टू यू.
1: थैंक यू सो मच.
0: एंड बाकी कंटेस्टेंट को क्या कहना है?
1: All the best, give your best, let's rock it.
0: And आज यहाँ पर grooming session होने वाला है. धीरे धीरे करके सारी मम्मीज यहाँ मिर्ची स्टूडियोज में आएंगे. Keep listening, मस्मोर और गौरव के साथ शाम शानदार. It's hot.
2: शाम शानदार brought to you by KIMS Health Medical Center.

0: Victory wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन स्टेशन
4: 89.6
2: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची वन पर हवाओं का रुख आज कुछ इस कदर है, कपड़े डालो 5 मिनट पहले, सूख के एकदम तैयार है। 89.6 मिर्ची वन पर मैं हूँ आपके साथ, और इतने ही कहूंगा जबरदस्त विंडी वेदर है आज, ऐसी हवाएं चल रही थी, हमें तो लगा अगर पतले दुबले लोग सड़क पे चल रहे तो साथ वाला हाथ उनका जरूर पकड़े रहे, उड़ने के चांसेस हैं।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट
0: बात करें तो राइट नाउ टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दिन का मैक्सिमम आज अराउंड 41 था, मिनिमम अराउंड 33। कुल मिलाकर पिछले दिनों की गर्मी के मुकाबले आज टेम्परेचर कम जरूर, लेकिन हवाओं का रुख लगातार बना हुआ है। 26 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चलती हवाएं हमें ये बता रही हैं कि भाई लू के थपेड़े चल रहे हैं। हमें और आपको अपना ख्याल बहुत रखना है दोस्त, क्योंकि मैं जानता हूं हम ऐसे जब लू के थपेड़े चलते हैं तो थोड़ी लापरवाही करते हैं, पर पानी पीते रहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, एंड एंटरटेनमेंट का हाइड्रेशन हम पूरा कर दे रहे हैं। अगला गाना लिपस्टिक लगा के नजर उतारने वाला गाना मिर्ची पर इट्स हॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
3: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
2: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साहब जी, ये मिर्ची हेल्पलाइन है
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: ओ साहब जी, नूडल्स का एक पैकेट बनाओ तो कम पड़ता है और दो बनाओ तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करूँ?
1: सिंपल है, तू कस्टमर को ऑर्डर पूछ के बनाना, वो बोले उतना ही बनाना।
2: रुक, रुक।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: जो नदी चुनरी आईपी सिंह जोनिता गांधी आशीष कौर इतने सारे लोगों ने मिलकर ऑर्केस्ट्रा बना दिया है, लेकिन सोचिए उस टाइम पे ये गाना सिर्फ एक इंसान ने गाया था। और यही एक क्वालिटी है आज के लोगों में कि पैसा कमाना है तो चार पांच को ले लो, सबको थोड़े थोड़े दे देंगे। उस जमाने के सिंगर पैसे ज्यादा लेते थे इसीलिए अकेले गाते थे। फिलहाल मिर्ची घड़ी के टाइम हम बता दें शाम के 5:03।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: 89.6 मिर्ची वन पर मस्मौला गौरव आपके साथ है। आई पे मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 के कंटेस्टेंट्स अब आज धीरे धीरे यहाँ मिर्ची स्टूडियोज में आ रहे हैं। तैयारियां माइक के पीछे हो रही हैं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो आई हैं उनका वेलकम करते हैं। मैम वेरी गुड इवनिंग, व्हाट्स योर नेम?
2: आई एम सरला।
0: सरला जी बहुत बहुत स्वागत है मिर्ची मॉमी अवार्ड्स के ग्रैंड फिनाले में। यू हैव एंटर्ड एज अ कंटेस्टेंट नाउ, हाउ यू फीलिंग राइट नाउ, कैसा लग रहा है?
2: या आई एम एक्साइटेड, देन दिस इज माय ड्रीम्स कम्स ट्रू रियल अपॉर्चुनिटीज।
0: ओके,
2: आई एम वेरी सो मच एक्साइटेड। That's it. I am a home creator.
0: Home creator, very good. Yes. I love this word. And how do you feel to be a part on this, platform?
2: It's a very dream for every mother. For me, I am a special mother because I'm having a special kid.
0: Yes.
2: It's a very, very special moment for me.
0: Platform where you can perform and do something.
2: You know, one thing, the crown is my head is for the day only. But the title is
0: Forever.
2: It's a My Life, right?
0: Wow, what a line. And from our side, all the best, Sarla ji. कमाल कीजिएगा एंड फिनाले में एकदम धमाल कर दीजिएगा।
2: थैंक यू सो मच ब्रदर।
0: थैंक यू। सो ये थी सरला जी एंड आई एम श्योर एक एक कंटेस्टेंट जबरदस्त है और सब एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रही है। यहाँ कॉम्पिटिशन होने ही नहीं है दोस्त। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Ya bana. Burga, burga. La vida la burga. Mirci, burga.
1: Hello. Hello.
2: Hello, Mr. Anil.
1: हाँ जी.
2: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
1: तीनों आ गए?
2: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास. आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
2: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
1: हाँ जी, फिर?
2: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद. एक सेकंड रुकिए.
1: हेलो.
2: हाँ सर, एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
1: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है कोई, आप गलत मिला है.
2: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
1: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
2: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके.
1: कौन बोल रहे भाई?
2: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
1: भड़क रहा हूँ भाई, क्या तरीका है?
2: क्या तरीका
1: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
2: अनिल बंसल आप ही हैं.
1: अनिल बंसल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी से कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
2: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
1: आप पहले कंफर्म तो करो, कम से कम
2: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार. आप एक बच्चा, तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
1: बात करो, एक तरीका बात करने का
2: यार, तरीका. आप बच्चा चुप हो जाओ, गुस्सा आ गया उनको. यार अनिल जी, कमाल कर दिया आपने.
1: मैं काम कर रहा हूँ बैठा, वो आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठकर.
2: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने, साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता है,
1: कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए.
2: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
1: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवा दूंगा बच्चा, समझ गया?
3: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
1: यार कमाल कर दिया भाई, भाई कुकड़ों को.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप, और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी.
5: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेड.
4: Witness Karishma Kapoor in her most ruthless avatar yet.
6: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी.
4: Catch Officer Brown.
7: Officer Brown
4: tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown streaming on Hindi Z5 from 12th June.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: बादशाह अरिजीत सिंह की आवाज में गाना खत्म हुआ, लेकिन मिर्ची पर आज मस्ती जबरदस्त चल रही है और सारी मॉम्स पर्दे के पीछे भी बहुत सारा फन मस्ती धमाल कर रही है। ट्रेनिंग सेशन इज ऑल फुल फ्लो में एंड क्योंकि फिनाले सैटरडे होना है, सारी मम्मियां तैयार हैं और ऐसे में एक और मिर्ची मम्मी कंटेस्टेंट टॉप 16 फिनाले की मेरे साथ है चारुल। चारुल, कैसी फीलिंग है सबसे पहले तो ये बताइए।
1: फीलिंग, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ऑफ कोर्स नर्वस टू, बिकॉज ऑल द मॉमीज आर सो अमेजिंग, दे आर सो अमेजिंग। तो हाँ, बहुत बहुत नर्वसनेस और एक्साइटमेंट। तो
0: मतलब लोग कह रहे हैं कंपटीशन नहीं है, वी आर सेलिब्रेटिंग, पर कहीं ना कहीं मन के कोने में तो कंपटीशन है।
1: कंपटीशन भी है, बिकॉज़ वी ऑल वांट टू विन,
0: यस,
1: एटलीस्ट फॉर आवर किड्स।
0: एंड क्या प्रिपरेशन कर रही है, कुछ बताना चाहेंगी? सरप्राइज ही रखेंगे।
1: कुछ कुछ तो चल रहा है।
0: कुछ कुछ चल रहा है,
1: गला साथ नहीं दे रहा।
0: ओ, तो यानी कि सिंगर सिंगर एक और सिंगर, मुझे लगता है मैं कह सकता हूँ उर्मी माला इज अ वेरी गुड सिंगर, लेकिन आपने भी ऑडिशन में सबका दिल गाने ही गाकर जीता था, तो क्या पता मौका मिल जाए। चलिए जी, ऑल दी बेस्ट। आई एम श्योर चारुल, यू विल बी परफॉर्मिंग एट योर बेस्ट।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
0: तो ये एक और कंटेस्टेंट जो तैयार है मिर्ची मॉमी के ग्रैंड फिनाले के लिए, जो होने जा रहा है सैटरडे। कब, कहां, कैसे, कान लगा के सुनते रहो मिर्ची, क्योंकि एंट्री इज बाय इनविटेशन ओनली। मिर्ची, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
2: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
3: दोस्ती का गुस्सा है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
4: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
5: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
6: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: वो कहते ना, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा बन के रहूंगा मैं शालू। भाई अक्षय कुमार के गाने से लेकर यहाँ मिर्ची स्टूडियोज में शालू के आने तक आपके साथ कौन है? यस, मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 के एक और कंटेस्टेंट टॉप 16 फिनाले में एंट्री कर चुकी है, नाम है शालू। शालू कैसी फीलिंग है, सबसे पहले तो ये बताएं।
1: The feeling is just like a wow.
0: Wow, just like a wow. And सोचा था कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे, आ जाएगा टॉप 16 में नाम?
1: ये तो नहीं सोचा था, but cross finger, hope थी कि हाँ, जज्बा है कि हाँ हो सकता है।
0: तो आप कहाँ से हैं, इंडिया से?
1: मैं पटना से, बिहार से।
0: बिहार से हैं?
1: जी हाँ।
0: तो भैया लॉलीपॉप लगे लू हो जाएगा। फिलहाल इतना ही कहना चाहेंगे, ऑल द बेस्ट टू यू। क्या तैयारी कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे कि सीक्रेट रखेंगे?
1: नहीं, सीक्रेट तो नहीं रखेंगे, मगर हाँ पूरा डेडिकेशन है कि हाँ क्राउन लेके जाना है।
0: क्राउन लेके जाएंगे मिर्ची मॉमी अवार्ड का, एंड यही सोच के साथ मॉमीज आ रही है, सेलिब्रेट करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे को चेयर करेंगी। लेकिन जब बात क्राउन की आती है तो सबको लगता है मेरे सर पे ही सजना चाहिए। ऑल द बेस्ट शालू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू मिर्ची स्टूडियो एंड 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? Radio पकड़ के खड़े रहना या फिर?
2: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है. तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है. ज़बान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे. थोड़ा इजीयर हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
1: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार. आप सुन रहे हैं मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर.
3: ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है. क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म. RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ.
4: अभी कॉल करें 3100-0813.

हो रही, हम भी गप मारते हैं जब मेरे पास पैसे नहीं होते और हमारे दोस्त यार खर्चे कर रहे होते हैं। हाँ भाई, अब ये सब गप मार के टाइम निकल जाता है, फिर महीने की 30 तारीख के आसपास खुशी आ जाती है चेहरे पे, लेकिन अगर आपने बचा के रखे हैं तो अभी भी रेट ठीक मिल रहे हैं। राइट नाउ की बात करें, एक कतरे रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीस 25.95, 25.95 रुपए भारतीय मुद्रा में आप आराम से पा जाएंगे अगर आप एक कतरे रियाल के बदले चाहते हैं इंडियन रुपीस। आप उसके बाद श्रीलंकन रुपीस भेजना चाहते हैं, 91.74 श्रीलंकन रुपीस अगेंस्ट 1 कतरे रियाल। अगर हम पाकिस्तान रुपीस की बात करें जनाब, वाहिद कतरे रियाल के बदले 76.75, 76.75 आपने मिल जाने, आपने घर भेज देना है ताकि आपकी सेविंग्स बढ़ती जाए। अगर नेपाली की बात करें तो तपाई को एक कतरी रियाल के बदले दाई रेट 41.47 को भल्चा रेट रही। हाँ जी बहनी, 41.47 का भल्चा रेट, घर भेजने का राइट टाइम छ। अगर इसके बाद हम बात करें बांग्लादेशी टका का, बंधु एकटा कतरी रियाल के बदले 33.77, तो 33.77 बांग्लादेशी टका का रेट। एटा मिर्ची पर रेट अच्छे तो एट आई पे ऐप, जहां पर आप डाउनलोड कर बहुत सारे और भी एडवांटेज ले सकते हो। कैसे, पहले ऐप डाउनलोड कर लो, समझ में आ जाएगा मिर्ची।

0: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
1: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ?
0: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: एक्साइटमेंट है मॉमीज के अंदर, जबरदस्त एक्साइटमेंट है। फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम शाम के 6:03।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: 89.6 मिर्ची वन पर मस्मोल और गौरव आपके साथ, और हलचल बढ़ चुकी है। मिर्ची मॉमीज की एंट्री अब ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ चुकी है, एंड ऐसे में सब की सब तैयार हो रही है, और ये ग्रूमिंग सेशन आज मिर्ची के साथ चल रहा है मिर्ची के एंटरटेनमेंट जोन में। और हमारे साथ एक और मिर्ची मॉमी कंटेस्टेंट है जिनका नाम है प्रीति पुरोहित। एंड प्रीति, हाउ यू फीलिंग राइट नाउ, सच बताइएगा।
2: हेलो गौरव, इट्स बिन माई प्लेजर टू बी हियर। इट्स द टाइम फॉर द रिहर्सल नाउ। वी आर ऑल डेक्ड अप एंड सो एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू बी हियर इन द मिर्ची मॉमी अवार्ड्स।
0: एंड मिर्ची मॉमी अवार्ड्स के लिए किसी पास्ट कंटेस्टेंट से कोई अंदर से निकाला, किसी सहेली से कुछ पूछा, ऐसा किया क्या?
2: कुछ नहीं पूछा, आप बता दो यार क्या करें हम लोग।
0: नहीं, बस बी योरसेल्फ और टैलेंट राउंड में एकदम धमाल करना है, ये आप ठान गए।
2: फॉर श्योर यू ऑल आर विद मी राइट?
0: यस वी आर विद यू, बट जजेस आर नॉट विद यू।
2: लेट्स रॉक इट, लेट देम डू देयर वर्क।
0: सो प्रीति, ऑल द बेस्ट टू यू बीइंग अ मॉम। आई एम श्योर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप परफॉर्म करने जा रहे हो मिर्ची मॉमी अवार्ड्स।
2: यू आर मेकिंग मी स्केयर्ड नाउ, आई एम थ्रिल्ड, बट वी आर एक्साइटेड एज वेल। ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर रेडी फॉर द शो
0: एंड इट्स अ सेलिब्रेशन। देयर इज नो कॉम्पिटिशन गोइंग।
2: Yes, yes.
0: बोलते हैं लेकिन वहाँ सब करते हैं कॉम्पिटिशन।
2: थोड़ा कॉम्पिटिशन हेल्दी इज नीडेड।
0: ओके, चलो जी, प्रीति पुरोहित को ऑल द बेस्ट बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मॉमीज के साथ मिर्ची पर। यहाँ इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त और गौरव आपके साथ मिर्ची स्टूडियोज में आज काफी ज्यादा हलचल है एंड मॉमीज की भीड़ मिर्ची के एंटरटेनमेंट जोन में है, जहां पर एक एक कर मिर्ची मॉमी की जो सीजन 5 की टॉप 16 कंटेस्टेंट है वो आ रही है। और इस वक्त मेरे साथ एक और कंटेस्टेंट है युक्ति सिंह। युक्ति, हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? सच सच बताइएगा।
1: हाय गौरव, आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू बी हियर। डर भी लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, बहुत मिक्स फीलिंग्स है।
0: नहीं नहीं, डरना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत डरना है, क्योंकि यहाँ पे कंटेस्टेंट जो है ना बहुत
1: यस यस बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं एंड आई थिंक दिस इज द रीजन वी हैव अ मिक्स फीलिंग, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सबको जानती हूँ एंड आई नो हाउ टैलेंटेड दे आर।
0: तो भाई अंदर बहुत सारी रिसर्च कर ली गई है, लेकिन युक्ति अगर बात करूँ तो टैलेंट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और लास्ट चारों सीजन की बात करें, टैलेंट राउंड पे ही एक दमदार प्रस्तुति के बाद जो है ना मिर्ची मॉमी के क्राउन के पास आदमी पहुंच जाता है, तो उसके लिए कुछ तैयारी यहाँ।
1: Yes, I am all set and I'm very excited क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि the thing which I am planning for it is very very close to my heart and I really hope it reaches to the audience too।
0: चलिए तो फिर यहाँ मत disclose कीजिए, वहीं कर लीजिएगा, लेकिन all the best to you and I'm sure सारी मॉमीज जबरदस्त परफॉर्म करने वाली हैं, बस 19-20 का फर्क ही होने वाला
1: है। I am 200% sure about that। Thank you so much।
0: All the best युक्ति। तो ये थी युक्ति, one of the top 16 finale contestant, 89.6 मिर्ची 1 पर। It's hot. Zuba.

0: Nerdy. Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. Na vida, la murga.
1: Nerdy, murga. Hello.
2: बेटा आप घर आ जा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
1: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
2: बेटा आजा, नहीं आजा आजा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
1: हेलो बेटा। अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
2: देख अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते हैं बेटा, एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते और तू चलाई
1: अंकल, मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
2: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
1: अरे अंकल, ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
2: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो
1: जानते। अंकल, मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
2: बेटे नहीं आते, ये नाराजगी होती है तो ऐसे खाल छोड़ कर जाते हैं।
1: जी माता जी से बात करा दीजिए।
2: बेटे आजा आजा बेटे।
1: अंकल माता कहाँ है?
2: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
1: छाता नहीं अंकल, माता आप अपने कान के बात।
2: बेटा कोई गलती हो या देख तो बेटा माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
1: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
2: मेरे बात
3: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
1: हेलो
2: बेटा। हेलो
1: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
2: हेलो बेटा, घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
1: अरे अंकल, आपका बेटा नहीं हूं मैं।
2: अगर आप मुझे आ जाएगा तो आज
1: आपने नंबर क्या मिलाया?
2: मैं तो कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आ जाए बेटा।
1: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
2: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे,
3: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
1: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
3: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
1: बोलना जरूरी है?
3: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
2: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: टॉप 16 श्रृंगार वाले कंटेस्टेंट, क्योंकि मैं कहता हूं कि 16 श्रृंगार हैं, इसलिए मिर्ची मॉमी अवार्ड्स के हर साल के फिनाले में हम टॉप 16 ढूंढते हैं, टॉप 15 नहीं, और इस बार भी टॉप 16 में से एक हमारे साथ आ गई, अदिति बहेती। अदिति, हाउ एक्साइटेड आर यू राइट नाउ?
1: या आई एम सो एक्साइटेड। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं और अपना टैलेंट शो कर सकते हैं।
0: तो मतलब कह सकते हैं कि ऑडिशन राउंड में तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। तो क्या प्रिपरेशन कर रही है, कुछ दोस्त यारों से कंसल्ट कर रही है?
1: लाइक मेन हार्ट ऑफ दिस कंप्लीट थिंग, सो आई डिस्क्लोज दैट डे द आइडिया बिहाइंड दिस एंड आई विल श्योरली फील लाइक द टैलेंट शो विल बी रॉक।
0: यस, टैलेंट शो हैज टू रॉक, बिकॉज़ वहीं से आप मेन पॉइंट्स जुटाते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन राउंड भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर राउंड भी उतना इंपॉर्टेंट है, बट तैयारियां कर रही है, आई एम श्योर सहेलियों का साथ मिल रहा है, बाकी चाहती हैं कि आप भी जीत के जाएं।
1: ऑब्वियसली जीतना तो इसका एक सबसे अहम मुद्दा है।
0: yes,
1: तो है, लेकिन यस, सब एक हेल्दी कंपटीशन से आए हुए हैं एंड आई रियली होप फॉर द गुड
0: एंड आई होप कि आप वहां बहती चली जाएंगी और बहती ही शायद क्राउन तक पहुंच जाएगी।
1: थैंक यू सो मच।
0: ऑल द बेस्ट। 89.6 मिर्ची 1 पर, वन ऑफ द फिनाले कंटेस्टेंट मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे आज तो सही नहीं, सब की सब आ गई हैं क्योंकि आज ग्रूमिंग सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस राउंड चल रहा है। एंड बात करो मैं मिर्ची मॉमी अवार्ड्स सीजन 5 के ग्रैंड फिनाले की टॉप 16 कंटेस्टेंट से, और एक एक कर यहाँ मिर्ची स्टूडियोज में मस्मोल और गौरव के साथ आ भी रही है। इस वक्त मेरे साथ है स्वाति। स्वाति कैसी फीलिंग है मिर्ची मॉमी अवार्ड्स के सीजन फिनाले में पहुंचना?
1: हाय गौरव, इट्स अ प्लेजर कि यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। इतना कॉम्पिटिटिव ऑडिशन था, सो दिस इटसेल्फ फील्स लाइक अ विन के वो 50 मॉमीज में से टॉप 16 में आना, मतलब इटसेल्फ इज अ बिग विन।
0: और उसमें अब क्राउन पहनना वो और बड़ी जीत होगी, उसके लिए तैयारी कर रही है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, टैलेंट राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बट अपने टैलेंट पे बहुत ऐसा गर्व था, बट अभी सबकी बातें सुन के थोड़ा ऐसा लग रहा है कि एकदम टाइट कॉम्पिटिशन, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने
0: वाला है। बहुत अच्छा है, यही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना ही तो आपको उस क्राउन के और करीब ले जाता है। सो डरते रहिए लेकिन अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए ग्रैंड फिनाले के स्टेज पर,
1: वही कोशिश है।
0: तो चलिए स्वाति जी, यूं ही मुस्कुराती रहिएगा और ग्रैंड फिनाले की एंट्री से फिनाले तक पहुंच कर उस क्राउन के पास पहुंचने की कोशिश कीजिएगा।
1: फिंगर्स क्रॉस, थैंक यू सो मच।
0: हाँ जी, तो फिंगर क्रॉस है एंड सारे कंटेस्टेंट अपने लिए बेस्ट तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए भाई, सब तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन इन स्टोरीज पर आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि तैयारी चल कैसी रही है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mitchie wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी.
2: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ.
1: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट.
3: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी.
1: कैच ऑफिसर ब्राउन टियरिंग थ्रू द सिटी ऑफ जॉयस डार्केस्ट सीक्रेट्स. ब्राउन स्ट्रीमिंग ऑन हिंदी Z5 फ्रॉम 12th June.
4: अर्ज किया है
5: इरशाद इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Ja Simran, ja jeere apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची 1 पर मैं हूँ आरजे मस्मौल और गौरव मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 एंड ग्रैंड फिनाले के लिए टॉप 16 कंटेस्टेंट्स आज अपनी अपनी प्रिपरेशन या यू कह ले प्रैक्टिस के लिए मिर्ची के एंटरटेनमेंट जोन में पधार चुके हैं एंड ऐसी दो कंटेस्टेंट जो टॉप 16 में है 16 श्रृंगार वाली वो हमारे साथ है यस शिल्पा एंड जरवीना सबसे पहले तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है
1: थैंक यू
0: एंड शिल्पा सबसे पहले आपसे कैसा एक्साइटमेंट है
1: एक्साइटमेंट लेवल कुछ ज्यादा ही हाई है कि हाउस द जोश वेरी हाई
0: एंड ये हाई जोश बरकरार रखना है एंड कुछ प्रिपरेशन घर पे भी चल रही है कि नहीं आज ही करनी है जो
1: वो सीक्रेट है
0: वो डिस्क्लोज नहीं होगी
1: वो डिस्क्लोज नहीं करना है क्योंकि लेडीज हैं
0: लेडीज तो लेडीज आपके साथ सेलिब्रेट तो करेंगे लेकिन कंपटीशन भी जबरदस्त होगा ये आप समझ रही हैं
1: इसलिए मैंने अंदर ही अंदर मन में सोच रखा है तो उसे ना डिस्क्लोज किया जाए अभी।
0: बहुत बढ़िया और जरमीना क्या तुम्हारा भी यही ख्याल है कि ये डिस्क्लोज नहीं करना
2: है फर्स्ट शो कंपटीशन लेवल इज हाई और फुल प्रिपरेशन चल रही है बस देखते हैं
0: जब टॉप 16 में आई तो जरमीना लगा था कि यार जाएंगे कर लेंगे
2: टॉप 16 में आई तो फिर लगा नो अब तो कुछ अच्छा ही करना है अब प्रिपरेशन स्टार्ट करना
0: अब असली शुरुआत हुई है
2: असली शुरुआत
0: तो चलिए जी जरमीना शिल्पा आप दोनों को ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर यू गोना रॉक इट
1: थैंक यू सो मच
0: चलिए जी 89.6 मिर्ची 1 पर वन ऑफ द टू फाइनलिस्ट ऑफ मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 मिर्ची पर ये थी शिल्पा एंड जरमीना इट्स हॉट

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
3: अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
2: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Oh yes, it's Mirchi Helpline. Tell me.
1: यार रोज सुबह लैपटॉप लेके कुछ लिखने के लिए बैठता हूँ, नोटपैड भी खोलता हूँ, पर लिख ही नहीं पाता, क्या करूँ?
0: लिख नहीं पाता हूँ, क्या करूँ? सिंपल मैन, नया कीबोर्ड ले ले।
2: मस्त जोक मारा रे, यह हंस रहे हल्का ढास।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: गाना था माशुका और यहाँ आपका आशिक आ गया है मसमौला गौरव। मिर्ची घड़ी का टाइम शाम के 7:05।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: 89.6 मिर्ची 1 पर एक एक कर सब आ रही हैं, तो ये कैसे पीछे रह जाती है। बात करो मैं मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 टॉप 16 ऑफ द फिनाले कंटेस्टेंट्स आर हियर, एंड ये टॉप 16 की और एक पेयर हमारे साथ, दिव्या एंड जेसी। वेलकम टू मिर्ची।
3: थैंक
1: यू गाइस आर एक्साइटेड। दिव्या सबसे पहले आपसे बात करते हैं, कैसा एक्साइटमेंट है और कैसा लगा था कि पहुंच पाएंगे यहां तक।
3: जिस दिन से ऑडिशन दिया है उस दिन के बाद से, जब टॉप 16 का सिलेक्शन हुआ उस दिन के बाद से मैं तो नहीं पाई हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू ऑल द रूल्स दैट आर देयर फॉर द फिनाले, और अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। एंड लुकिंग एट ऑल दीज कंटेस्टेंट्स आई एम अगेन नर्वस, आई डोंट नो व्हाट टू डू।
1: इतना बड़ा आरोप मिर्ची पे लगा दिया कि मिर्ची ने आपकी नींद चुरा ली।
3: नींद चुरा ली मेरी
1: चैन नींद सब चुरा ली है मिर्ची ने, क्योंकि मॉमीज अब प्रिपेयर कर रही है अपने आप को ग्रैंड फिनाले के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू दिव्या।
3: थैंक यू वेरी मच गौरव।
1: एंड जेसी, जेसी जेसी कोई नहीं, जेसी हाउ यू फीलिंग राइट नाउ, सबसे पहले तो ये बताओ।
4: आई हैव ऑल बटरफ्लाइज
1: पेट में भी और बाहर भी सब।
4: एक्चुअली कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ,
1: लेकिन
4: अभी तक सपना लग रहा है।
1: टॉप 16, अब देखो ये
4: एक्सपेक्ट भी नहीं किया था।
1: टॉप 16 में हो, कैसी फीलिंग?
4: एक्सपेक्ट भी नहीं किया था।
1: एंड नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रैंड फिनाले,
4: टॉप 16 फॉर द ग्रैंड फिनाले, डे एंड नाइट, एंड बट फिर भी सब भूल जाते हैं।
1: भूलना नहीं है, याद रखो ये वो प्लेटफॉर्म है। हां बताओ ना।
4: बट बहुत खुशी हो रही है कि भाई हम आज यहाँ तक पहुंचे, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि हम वर्थड है यार, कुछ है हमारे बात।
1: अरे मैं तो कह ही रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में कामयाबी है, लेकिन असली कामयाबी वो क्राउन पहनना है जिसके सपने आप रोज देख रही हैं। चलिए जो उम्मीद करेंगे आप सबका सपना पूरा हो, ये क्राउन आपके सर पर ताज की तरह सजे। एंड फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट।
3: थैंक यू वेरी मच।
1: सैटरडे को देखते हैं क्या धमाल होता है। 89.6 मिर्ची 1 पर ये थी और दो कंटेस्टेंट दिव्या एंड जेसी मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana.
1: Rabana.
0: Burga, burga. La virtual la burga.
1: Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
2: स्पीकिंग।
3: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
2: अच्छा।
3: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
2: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया।
3: ओह गॉड।
2: और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
3: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
3: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
2: आ सकती हूँ मैं
3: उसमें? बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियाँ आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
2: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
3: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं, या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
2: आपका क्या है?
3: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
2: ठीक है।
3: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
2: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा, तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
3: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही हैं।
2: मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
3: हेलो,
2: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
3: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
1: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: और सबसे पहले ये बताइए प्रियंका, कितनी एक्साइटमेंट है आपके अंदर इस बात को लेकर कि मिर्ची मॉमी? अरे आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू है पगली।
1: एक्चुअली एक्साइटेड से अभी तो मुझे ऐसा लग, बहुत घबराहट, गुनगुनाहट, ऐसा सरसाहट, बॉडी में जो सेंसेशन सब सेंसेशन हो रहा है।
0: लेकिन तैयारी कर रही है ना?
1: तैयारी तो कर रही हूँ। पता नहीं इतने अमेजिंग मॉम्स जो है, पता नहीं कैसे मैं उनके साथ टक्कर दे पाऊंगी।
0: अरे पता नहीं कि चक्कर में ही टॉप 16 में आ गई, आप तो कंटेस्टेंट बन भी गई।
1: सो हैप्पी फॉर दैट, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच मिर्ची वन फॉर गिविंग दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। आई एम रियली लविंग इट, थैंक यू सो मच।
0: ऑल द बेस्ट टू यू प्रियंका, आंखों में खुशी के आंसू। और मैं चाहता हूँ जब आप उस दिन क्राउन पहन रहे थे यही आंसू आपके अंदर।
1: आई विश, आई एम मैनिफेस्टिंग इट।
0: ओके तो ये करिए मैनिफेस्ट, लेकिन आप क्या करिए दीपा? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड अबाउट इट?
2: मिक्स फीलिंग है, एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है। कुछ अलग ही फीलिंग है कि फर्स्ट टाइम आई एम पार्टिसिपेटिंग रेडियो में, तो लेट्स सी।
0: मतलब लेकिन तैयारी बैकग्राउंड में चल रही है, दोस्त सबसे पूछ रहे हैं क्या करूं क्या पहनूं।
2: नहीं अभी तक सब कुछ पूछा नहीं, आज रिहर्सल है तो लेट्स सी कि आज क्या कहते
0: हैं। एंड रिहर्सल के बाद असली तैयारी शुरू हो जाएगी
2: एक्चुअली। हां हमें तब पता चलेगा कि क्या होने वाला है।
0: चलो दीपा एंड प्रियंका, ऑल द बेस्ट टू यू टू एंड आई एम श्योर आप लोग रॉक करने वाले हो।
1: थैंक यू।
0: चलो जी ये और दो कंटेस्टेंट 89.6 में जीवन पर, इट्स हॉट
3: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: एंड फाइनली लास्ट टू 89.6 मिर्ची वन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 ग्रैंड फिनाले की लास्ट टॉप टू कंटेस्टेंट कह सकते हैं जो कि यहां आ चुकी हैं और पर्दे के पीछे तैयारियां बहुत चल रही है। प्रेमलता नेहा वेलकम टू मिर्ची स्टूडियो।
1: थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच।
0: एंड यू गाइस आर एक्साइटेड?
1: वेरी वेरी
2: टू मच।
0: प्रेमलता पहले तुमसे पूछते हैं
1: yes.
0: क्या चल रहा है? प्रिपरेशन शुरू हो गई कि आज से शुरू होगी? सच बताओ।
1: प्रिपरेशन चालू तो है बट नर्वसनेस बहुत है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वर्कआउट होगा नहीं होगा,
0: बट तो मतलब सरसराहट कप का पार्ट आपको भी है
1: जरूर
0: सेंसेशन हो
1: रहे
0: हैं। इज इट सेम विद यू या नेहा थोड़ा सा सोच रही कि नहीं यार कर लेंगे जब वहां तक आगे
2: कर लेंगे हो जाएगा
0: हो जाएगा। टैलेंट राउंड में क्या खास करने वाले हो, यहाँ डिस्क्लोज करोगे कि सीक्रेट?
1: नहीं नहीं सरप्राइज
0: सरप्राइज नेहा क्या
2: सीक्रेट
0: सीक्रेट सरप्राइज। लेकिन आई एम श्योर दोनों के मन में ये तो जरूर चल रहा होगा कि यार हेल्दी कंपटीशन होने वाला है, भले ही सब कह रहे हैं सेलिब्रेट करेंगे पर कंपटीशन तो एक कोने में सबके दिमाग में है।
1: सही है,
2: आई थिंक ऑनेस्टली यस
0: यस। एंड यही सच्चाई है, मॉमीज जब आपस में आती है वो भले एक दूसरे को सेलिब्रेट करती है पर मन के एक कोने में होता है क्राउन तो मैं ही पहनूंगी, इस बार तो मैं ही जीत कर जाऊंगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द लेडीज एंड लास्ट टू ऑफ यू ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू थैंक यू सो मच।
0: मे यू परफॉर्म द बेस्ट
1: यस
0: एंड वो क्राउन का जो सपना देखा है वो आपका साथ पूरा हो जाए।
2: थैंक यू थैंक यू सो मच।
0: एंड ये थी मिर्ची पर लास्ट टू कंटेस्टेंट्स, यस प्रेमलता एंड नेहा, एंड आप सुन रहे हैं मस्त मौला गौरव के साथ सैटरडे को असली विनर का नाम मिर्ची पर। इट्स हॉट, तब तक लिए ट्यून इन करते रहो।

0: Mirci.
1: Tentacle original and better than our right.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100 on 100 impersonation of Sanjay Dutt. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: देखिए बातों ही बातों में टाइम कैसे चला जाता है पता नहीं लगता। आज सारी मची मम्मीज को आपसे मिलवा दिया और अब टाइम आया है कि हम खुद को खाने की प्लेट से मिलवा दे। अरे भैया डिनर टाइम जा रहा है मस्त मौला गौरव। यस टॉप 16 फिनाले की कंटेस्टेंट हमारे साथ थी आज यहाँ मिर्ची पर, अपनी सारी बातें रखी और कितनी एक्साइटेड है ये भी बता दिया। अब इन सभी को हम दिल से ऑल दी बेस्ट कहते हैं एंड थैंक यू टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स जिन्होंने इस बार सीजन 5 में हमारा साथ दिया है। आईपी को दिल से शुक्रिया टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए एंड इसमें विमेंस को सेलिब्रेट करने का ये दिन आई एम श्योर बहुत सारा फन मस्ती धमाल होगा। अंशु तुमने ब्रीफिंग की, कैसा लगा पूरा सेशन करके? इस बार मॉम्स कितनी एक्साइटेड है?
1: जितने एक्साइटेड आप हो।
0: वैसे सच्चाई ये है कि यार सब एक्साइटेड है। हमारे यहाँ तो रोज शादी वाला माहौल अब तैयार हो जाएगा अगले कुछ दिनों के लिए, इस उम्मीद में कि इस बार सैटरडे को ये ग्रैंड फिनाले जबरदस्त होगा। मस्त मौला गौरव लेगा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में। तब तक ले हबीबी मा सलामा मिर्ची इट्स हॉट हरारा कतीर।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। और दोस्त, एक उम्र के बाद ना आपके साथ कोई गलत भी करके चला जाता है तो वियर्डली आपको ये समझ में आ रहा होता है कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है। और ये जहां एक तरफ आपके सेल्फ की एक बहुत बड़ी ग्रोथ है, वहीं एक तरफ कभी ना कभी थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो जाता है। जैसे आप जैब गौरी साहब का शेर देखें, कानपुर से हुए जैब गौरी साहब, उनका बड़ा सटीक शेर लगा मुझे। कहते हैं कि जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, मैं भी धोखा खाकर कुछ चालाक हुआ। अब यही बात है, देखिए किस तरीके से जैब साहब ने एक बुरे इंसिडेंट के बाद भी ही टुक अ लर्निंग आउट ऑफ इट एंड ही सेज कि जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, मैं भी धोखा खाकर कुछ चालाक हुआ। अब वही है यार, हर कोई अपने नजरिए से सही है और किसी के नजरिए से गलत। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, स्वागत है आपका। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाँ जी, और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: कि आप कताशी, आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर आनंद नारायण मुल्ला साहब से। बिल्कुल जी, 1901 से 1997 तक इनका जीवन काल रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, लोकसभा के सदस्य भी रहे। एंड आनंद नारायण मुल्ला साहब का एक बड़ा ही मेरा पसंदीदा शेर है, कहते हैं कि जब दिल में जरा भी आस ना हो, इजहारे तमन्ना कौन करे। जब दिल में जरा भी आस ना हो, इजहारे तमन्ना कौन करे। अरमान किए दिल ही में फना, अरमान को रुसवा कौन करे। अब वो अरमान बताने से क्या फायदा जो मर गए, है ना। वो और बेइज्जती होगी उन अरमानों की कि अरे अच्छा ये भी सोचते थे क्या तुम, ओहो कभी सोचते थे कि रोल्स रॉयस खरीदोगे। अरे समझ गया यार, कभी रोल्स रॉयस नहीं खरीद पाऊंगा, मैंने वो अरमान मार दिया है। जब दिल में जरा भी आस ना हो, इजहार तमन्ना कौन करे। अरमान किए दिल ही में फना, अरमान को रुसवा कौन करे। ये थे आनंद नारायण मुल्ला साहब। और समझ रहे हैं एक समय की जो गंगा जमनी तहजीब थी, क्या नाम भी है इनका, आनंद नारायण मुल्ला। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका दाशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और मेरे एक बड़े ही अजीज शायर हैं, लखनऊ से हैं, मैं जानता भी हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कमर अब्बास कमर उनका नाम है, और उनका एक शेर है जो मेरे जहन में इतने वक्त से अटका हुआ है कि मैंने बोला आज आपको सुनाना तो बनता ही है ना। रात के बारे में शेर है, रात ही हो रही है तो नजर है आपके। कहते हैं कि हमारी रात का एक वक्त तय है जिसमें हम, हमारी रात का एक वक्त तय है जिसमें हम तमाम बिछड़े हुओं को बुलाने लगते हैं। आय हाय हाय हाय हाय। हमारी रात का एक वक्त तय है जिसमें हम तमाम बिछड़े हुओं को बुलाने लगते हैं। इससे तो मुझे वो शेर याद आता है यार कि कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। आए हाय। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। मिर्ची महफिल बरकरार है, कारवां स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी नजर करे आज का ताशी अनप्लग्ड आपको और ये जो गजल है भाई साहब ये हरिहरन साहब की गाई हुई है और मेरे जहन पे इस तरीके से ये चिन्हित हो गई है अंकित हो गई है जज्ब हो चुकी है मेरे दिल में ये गजल इस तरीके से क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे गजल। बेसिकली जैज का इस्तेमाल गजल के साथ किया गया है एंड इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स की दो जॉनराज को किस तरीके से साथ में मिलाया जा सकता है। This is called ये आईने से।

बने रहे अपने ताशी के साथ सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और आपको अगर और गजलें सुननी हो और नगमे सुनने हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप। इट्स

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: 89.6 मिर्ची वन. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची.

पुरानी जीन्स पर आज हम एक बहुत ही स्पेशल म्यूजिक कंपोजर सिंगर की बात करने वाले हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये जो सिंगर है ना, इनकी आवाज में इतनी मासूमियत है कि उस आवाज के ना इसे गाल पकड़ के प्यार से वुगली वुगली ऊश करने का दिल करता है। उस आवाज में इतनी रूहानियत है कि जब सुनते हैं तो कानों से होते हुए रूह में उतर जाती है। ये आवाज है हेमंता मुखोपाध्याय की, या हेमंत मुखर्जी की, या हेमंत कुमार की, या प्यार से जैसे कहते हैं हेमंत दा की आवाज आपके दिल और जज्बात के ऐसे तार छेड़ जाती है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब ये गाना जो हम सुनने वाले हैं ना, इसे सुन के उस इंसान को भी अनरिक्वाइटेड या अधूरे प्यार का दर्द महसूस हो जाए जिसे किसी से प्यार ही नहीं है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, हेमंत दा के बारे में और करेंगे बात राइट हियर मिर्ची पर।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो
2: बेटा, आप घर आ जाओ, मामा परेशान है, खाना खा ले। ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
1: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
2: बेटा आ जा, नहीं आ जा, आ जा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
1: हेलो
2: बेटा।
1: अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
2: देख, आपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा। एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चला गया।
1: अंकल, मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
2: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
1: अरे अंकल, ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
2: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते।
1: अंकल, मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
2: बेटा नहीं, ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
1: माता जी से बात करा दीजिए।
2: बेटे आजा, आजा बेटे।
1: अंकल, माता कहाँ है?
2: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
1: छाता नहीं अंकल, माता। आप अपने कान के बात।
2: बेटा कोई गलती हो या देख तो बेटा माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
1: अंकल, मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
2: अरे बात, मेरे बात,
3: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
1: हेलो
2: बेटा। हेलो
1: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
2: बेटा घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
1: अरे अंकल, मेरे बात कर, बेटा नहीं हूं मैं।
2: अगर आप मुझे आ जाएगा तो आज
1: आपने नंबर क्या मिलाया?
2: मैं तो कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आजा बेटा।
1: अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
2: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
3: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
1: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
3: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
1: बोलना जरूरी है?
3: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
2: आवाज भी है, तेज बोल।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और आज हो रही है द लेजेंड हेमंत कुमार की बात। हेमंत दा का जन्म 16 जून 1920 को बनारस में हुआ था। अब तब तो बनारस ही बोलते थे ना। ये उनके नाना नानी का घर था। उनके पापा दादा तो बंगाल के थे, बंगाल में ही उनकी स्कूल की पढ़ाई हुई। लेकिन हेमंत दा जब कॉलेज पहुँचे तब उन्होंने क्या किया, करते हैं ना बात थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: She wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहां चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
3: Purani jeans with Jaru, only on

0: महान गायक और कंपोजर हेमंत कुमार की बातें आज हम कर रहे हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो हेमंत दा ने स्कूल की पढ़ाई तो कर ली, उसके बाद इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के लिए उन्होंने जादवपुर में बंगाल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे अब जादवपुर यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वो ज्वाइन की। लेकिन जैसे ही ये कॉलेज की पढ़ाई जोर पकड़ने लगी, हेमंत दा की तबीयत खराब होने लगी। फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी थे, लेकिन तन की तबीयत से ज्यादा मन की तबीयत खराब हो रही थी, क्योंकि मन तो म्यूजिक में लगा था ना। 17-18 साल के रहे होंगे हेमंत दा, उन्होंने मन बना लिया कि करियर तो म्यूजिक में ही बनाऊंगा। उनके फादर इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन लड़का तो हाथ से निकल गया था, क्योंकि उसे संगीत की ऊंचाइयों तक जो पहुंचना था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं आज हेमंत कुमार स्पेशल मिर्ची पर।
1: नजरों से कह दो जी।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आमिर खान पीके वाज एन आइकॉनिक फिल्म, कई सारे आइकॉनिक सीन्स थे। Which one was the most difficult? रेडियो पकड़ के खड़े रहना या फिर?
5: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई, क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ। मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे, और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान चल जाती है। उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी, चूना और कत्ता होता था।
4: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं, दिन के 100 पान कौन खाता है यार। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

द लेजेंड कॉल्ड हेमंत कुमार। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हेमंत दा ने म्यूजिक की ट्रेनिंग ली बंगाली म्यूजिशियन शैलेश दत्त गुप्ता से और क्लासिकल म्यूजिक सीखा उस्ताद फैयाज अली खान से। भाई हेमंत दा का पढ़ाई लिखाई में खास दिल नहीं लगता था स्कूल में, क्योंकि उनका दिल तो संगीत में लगा हुआ था ना। स्कूल में ही उनके आर्ट से जुड़े दो लाइफ टाइम दोस्त बन गए थे, सुभाष मुखोपाध्याय जो आगे चलकर एक बहुत ही सेलिब्रेटेड पोएट बने और संतोष कुमार घोष जो आगे चलकर एक बहुत ही जाने माने राइटर बने। सुभाष मुखोपाध्याय के कनेक्शंस की वजह से हेमंत दा को 13 साल की उम्र में, व्हेन ही वाज जस्ट 13, इमेजिन, उनका पहला सिंगिंग ब्रेक मिला ऑल इंडिया रेडियो में गाने के लिए। ये सफर आगे कहाँ बढ़ा करते हैं ना बात थोड़ी देर के बाद। फिलहाल हेमंत दा का कंपोज किया हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं साहब बीवी गुलाम मूवी से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है?
2: ओ सब्जी, नूडल्स का एक पैकेट बनाओ तो कम पड़ता है और दो बनाओ तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करूँ?
1: सिंपल है, तू कस्टमर को ऑर्डर पूछ के बनाना, वो बोले उतना ही बनाना।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: रात के बच चुके हैं 10 मिर्ची पे। शो का नाम पुरानी जीन्स।

बातें हो रही हैं आज उस म्यूजिक कंपोजर, उस सिंगर की जिनकी आवाज को वॉइस ऑफ गॉड भी कहा गया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। द लेजेंड हेमंत कुमार। हेमंत दा की फिल्मी म्यूजिक जर्नी की शुरुआत हुई थी 1940 में, जब उन्होंने एक बंगाली फिल्म के लिए अपना पहला गाना गाया था। द कंपोजर वॉज अगेन अ लेजेंड एसटी बर्मन साहब। और ये प्रोफेशनल लाइफ तो शुरू हो ही गई थी, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी सेट होने की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि इसी दौरान वो अपनी फ्यूचर वाइफ बेला मुखर्जी से मिले। बेला जी भी एक सिंगर थी, इनफैक्ट काफी गानों में हेमंत दा ने बेला जी को मेंटर भी किया। 1945 में दोनों की शादी हुई। उन्होंने एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट की जिसका नाम था हेमंत बेला प्रोडक्शंस, बाद में जिसका नाम बदल के गीतांजलि प्रोडक्शंस रख दिया गया था। इनके दो बच्चे थे, बेटी रानू और बेटे जयंत, जिनकी शादी बाद में एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी से हुई। अच्छा, बैक टू मिड 40s। तो इस सफर में हम सफर तो हेमंत दा को अब मिल गया था, लेकिन आगे अभी उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी ऊंचाई पर पहुंचना था। करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virbala burka. Mirchi burka.
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
3: स्पीकिंग।
4: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
3: अच्छा।
4: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
3: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
4: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
4: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
3: आ सकती हूँ मैं उसमें?
4: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियां आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
3: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
4: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
3: आपका क्या है?
4: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
3: ठीक है।
4: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
3: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा, तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
4: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुर के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
3: नहीं, मना क्या कर दे, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
4: हेलो,
3: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
4: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हमारे देश की बहुत बड़ी त्रासदियों में से एक है अर्ली और मिड 40s का बंगाल का अकाल। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस त्रासदी में बंगाल के लाखों लोग भुखमरी, गरीबी, लाचारी, बीमारियों का शिकार हुए। तब बंगाल की एक संस्था IPTA, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी काम करती थी और लोगों के हित के लिए भी, उसके दो मेंबर्स ने इस त्रासदी से आहत होकर एक गाना बनाया। ये गाना उन सारे बंगाली गानों से अलग था जो अब तक बंगाल में बनते आए थे। एक खुशहाल गांव को कैसे इस अकाल, इस गरीबी ने बर्बाद कर दिया, ये उस गाने में बहुत संवेदनशीलता के साथ बताया गया। ये गाना बनाया था एक लेजेंड कंपोजर सलिल चौधरी ने और गाया था एक और लेजेंड कंपोजर सिंगर हेमंत कुमार ने। इस गाने ने लोगों के दिल को इतना छुआ कि हेमंत कुमार सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे देश में पॉपुलर हो गए। ये हुआ था 1947 में। तब हेमंत दा बंगाली फिल्मों के गाने तो गा ही रहे थे। इसके बाद वो मुंबई कैसे आए, करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

द लेजेंड हेमंत कुमार की जर्नी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो लेट 40s तक हेमंत दा बंगाल में इमेंसली पॉपुलर हो गए थे। इसी दौरान वो डायरेक्टर हेमंत गुप्ता से मिले, जो 1950 के आसपास मुंबई शिफ्ट हो गए। और जब उन्होंने अपनी फिल्म आनंद मठ बनाने की सोची तो उसका म्यूजिक कम्पोज करने के लिए हेमंत दा को बुलाया और 1951 में हेमंत दा भी मुंबई शिफ्ट हो गए। और इस फिल्म का बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ वंदे मातरम, जो लता मंगेशकर जी की आवाज में हेमंत दा ने कंपोज किया था, इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वर्जन्स ऑफ दैट पेट्रियोटिक सॉन्ग। और देशभक्ति के गानों की बात करें तो फिर 1954 में जागृति फिल्म के गाने भी हेमंत दा ने कंपोज किए, जो आज भी हर इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे चलते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या फिर हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इन फिल्मों के साथ एक और फिल्म और उसका आइकॉनिक म्यूजिक था, और उसी के साथ साथ हेमंत दा के गाए हुए गाने भी, जिसने हेमंत दा को हिंदी फिल्मों में भी एक बहुत बड़ा नाम बना दिया। करते हैं उसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Bollywood, Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
4: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
3: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

द लेजेंड हेमंत कुमार, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो हेमंत दा 1951 में बॉम्बे शिफ्ट हो गए। 1952 में एज म्यूजिक कंपोजर उनकी पहली हिंदी फिल्म आई आनंद मठ, जिसका म्यूजिक इतना ज्यादा नहीं चला। इसके बाद इन्होंने एक दो फिल्मों का म्यूजिक और दिया, वो भी कुछ खास नहीं चला। तब हेमंत दा को लगा कि चलो वापस कलकत्ता चलते हैं, और तब उनको रोका फिल्मिस्तान स्टूडियो, जो तब एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी, उसके वन ऑफ द फाउंडर्स एस मुखर्जी ने। ये एस मुखर्जी वही थे जिन्होंने हेमंत दा को सजेस्ट किया था कि वो हिंदी फिल्मों के लिए अपना नाम हेमंत कुमार रख लें। तो मुखर्जी साहब ने उनको बोला कि भाई ऐसे मत जाओ, एक हिट तो देकर जाओ। और इसके बाद जो इन्होंने म्यूजिक दिया है उसे हिंदी फिल्मों का आइकॉनिक म्यूजिक माना जाता है। इसके म्यूजिक के लिए हेमंत दा को फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड मिला था। ये म्यूजिक था नागिन फिल्म का म्यूजिक, जिसमें वो क्लासिक बीन वाली ट्यून थी। और आपको पता है इसमें हेमंत दा ने साउंड के लिए बीन का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने ये साउंड हारमोनियम और क्लेवायलिन नाम के एक इंस्ट्रूमेंट की साउंड को मिला के बनाया था। आज भी जहां भी ये म्यूजिक चलता है सबके मन डोल जाते हैं, तन डोल जाते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
1: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ?
0: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: हेमंत दा कमाल के सिंगर थे और उससे भी ज्यादा कमाल के म्यूजिक कंपोजर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनकी ना एक और स्पेशलिटी थी कि वो टेक्निकली बहुत साउंड थे, मतलब उस टाइम पे 50s-60s में जब म्यूजिक में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हेमंत दा को पता रहता था कि किस गाने के लिए माइक कितना दूर रखना है या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज करना है। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि नागिन फिल्म के मन डोले मेरा तन डोले में वो जो आइकॉनिक बीन की ट्यून है, उसमें एक्चुअली उन्होंने बीन का इस्तेमाल नहीं किया है, हारमोनियम और क्लेवालन नाम के इंस्ट्रूमेंट की साउंड को मिक्स करके वो बीन की साउंड बनाई गई है। एंड उसके बाद यू नो फिल्म्स लाइक 20 साल बाद, साहेब बीबी और गुलाम, अनुपमा एंड खामोशी, खामोशी का म्यूजिक उफ तौबा। खास करके जो गाना हम सुनेंगे इसमें नाव से टकराती पानी की लहरों की आवाज, जिस तरह से कोरस का इस्तेमाल किया गया है, या बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर के म्यूजिक की जो छाप इनके म्यूजिक में सुनने को मिलती है, दैट इज सो ब्यूटिफुल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।
1: शाम कुछ

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Purani Jeans. Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Nafir wala murga. Mirchi murga.
2: Hello. Hello.
3: Hello, Mr. Anil.
2: Anji.
3: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
2: तीनों आ गए?
3: सर मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास. आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
2: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
3: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
2: जी फिर?
3: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग. एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद. एक सेकंड रुकिए.
2: हेलो.
3: हाँ सर, एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
2: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है कोई. आप गलत मिला है.
3: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
2: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
3: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके.
2: कौन बोल रहे भाई?
3: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
2: भड़क आप रहो भाई, क्या तरीका है?
3: क्या तरीका
2: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
3: अनिल बंसल आप ही हैं.
2: अनिल बंसल मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी से कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
3: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
2: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम.
3: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप. एक बच्चा, तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
2: बात करो, एक तरीका बात करने का
3: यार. तरीका आप,
4: ओ बच्चा चुप हो जाओ, गुस्सा आ गया उनको. यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने.
2: मैं काम कर रहा हूँ बेटा, वो आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बेटा.
3: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने, साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता है
2: आप कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए.
3: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
2: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा ये बच्चा, समझ गया?
4: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
2: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को भाई, कुकड़ों को.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट,
6: इट पटा.
0: पुरानी जींस चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर.

0: ना कैदी तो कैदी, नहीं चाहिए तुम्हारा अवार्ड, पहले क्यों नहीं दिया।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पहले मैं जब ऐसा बोल रही हूँ तो शायद थोड़ा एटीट्यूड साउंड कर रहा होगा, लेकिन
0: हेमंत दा ने जब ऐसा किया था तो वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। जी मैं बात कर रही हूँ द लेजेंड कंपोजर सिंगर हेमंत कुमार की। उनको उनके गानों के लिए, म्यूजिक के लिए बहुत अवार्ड्स मिले। इनफैक्ट 1970 में और 1986 में उनको दो बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिल चुका है। लेकिन 1971 में पद्मश्री और 1987 में पद्म भूषण जैसे सम्मान लेने से हेमंत कुमार ने मना कर दिया। हेमंत दा को ऐसा लगा कि ये सम्मान उनको बहुत देरी से मिला, इतने साल उनके काम को नजरअंदाज किया गया, उनके जूनियर्स उनके कंटेम्प्रेरीज को बहुत पहले ये सम्मान मिल चुका था, तो बस सेल्फ रिस्पेक्ट आड़े आ गई, सम्मान लेने से मना कर दिया। पर आई थिंक सबसे बड़ा सम्मान जो उनके काम को मिला है और आज तक मिल रहा है वो ये कि जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन लोग उनका म्यूजिक उनके गाने इतने पसंद करते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: Burani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Bollywood, Boulder.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: Gulshan Grover, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
4: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
3: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100 on 100 impersonation of Sanjay Dutt. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
1: Bollywood Boldar.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldar.
0: Only on Mirchi, it's hot.

0: एक लेजेंड ने दूसरे लेजेंड के बारे में क्या कहा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लता मंगेशकर जी हेमंत कुमार जी के बारे में ऐसा कहती थी कि हेमंत कुमार जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई संत साधु है और अपनी भक्ति के गीत गा रहा है, इतने डिवोशन के साथ। एक बहुत पुराने इंटरव्यू में सुनिए लता जी ने हेमंत दा के म्यूजिक कॉम्पोजिशन के बारे में क्या शेयर किया था।
1: हेमंत दा इसमें विश्वास करते थे कि सिंपल ट्यून हो, बोल अच्छे हो, और जब गाना रिकॉर्ड होता था तो उनके म्यूजिक में भी एक बड़ा सिंपल ये रहता था, बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा या इसमें वो विश्वास नहीं करते थे, और खुद गाते थे अच्छा। तो जो खुद गाता है वो जब गाना बनाता है तो उसका एक अलग ही रंग हो जाता है,
0: और ऐसे रंग जो पता नहीं कितने सालों से दुनिया को रंगीन बना रहे हैं। इन दिग्गजों का कोई भी पुराना गाना आप उठा के सुन लो, क्या ही कमाल होता है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए।

अभी कल परसों ना मैं YouTube पे गाना देख रही थी, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और देखते देखते मैंने उसके कमेंट्स पढ़ रही थी, और वो कमेंट्स में वो जेनरेशन भी थी जो उस टाइम टीनेजर थी जब वो गाना रिलीज हुआ था, और वो जेनरेशन भी थी जो आज टीनेजर है। वो गाना था 1957 की प्यासा का, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा तो कमाल है ही, SD बर्मन जी की क्या ही कॉम्पोजिशन है, और जो गाया है हेमंत दा ने। म्यूजिक कंपोजर सलिल चौधरी यूं ही नहीं कहते थे कि हेमंत दा की आवाज इज वॉइस ऑफ गॉड, ऊपर वाले की आवाज है वो। आप उनकी आवाज जब सुनते हैं ना, एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो चलते हैं अलग ही दुनिया में, ये गाना सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, वापस जल्दी होती है मुलाकात, सुनते रहिए।

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची।

इस गाने को आवाज दी है बयानी और हार्डी संधू ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। कॉकटेल 2 से सुनते रहिए बल्ला, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

दिन सब हो गए हैं गोविंदा के संग। अरे समझे,